करो खरी जगत जगतारे भजन करो हरे जगत जगतारे भजन करो।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबके दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली

0: बड़ी भूख लगी है, जरा देखो तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए, रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो उनका स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। जी नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ, आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: आज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री जनकी।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोइये, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
6: शाही पकवान, और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ, मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रूसी हुए लाल टमाटर के।
5: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
6: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज गुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
5: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
0: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी? मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
6: ये लीजिए महाराज।
2: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ शाही रसोइये।
6: जी महाराज।
2: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
6: जी महाराज।
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
5: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
1: महाराज ने चम्मच को उठाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
2: भाई वाह,
4: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
2: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
1: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
0: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तो गाना ही सुना दिया।

0: मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू बुल्लू मुन्नू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं। आम किसी भी तरह खाया जा सकता है और आज मैं, मम्मी और शिरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे।

0: कुछ सब्जियाँ और मसाले डालेंगे, तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, हरा धनिया, मिर्च। बड़ा मजा आ रहा है। भेलपुरी में हम मुरमुरे जरूर डालते हैं और फिर मिला देते हैं सभी सामान। बन गई चटपटी भेलपुरी। अब आएगा मजा, हम सब साथ मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपुरी।
1: कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपुरी बनाई। भाई वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
3: तैयार।
2: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गोगी, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
3: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
2: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुनो।
3: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
2: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों, खेलोगे ना तुम मेरे साथ? हुँ?
3: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
2: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम।
3: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आ गया समझ। चमकी मैं बताऊं?
2: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
3: चमकी अब तो जवाब बताने दो।
2: अच्छा अच्छा, बताओ क्या है जवाब।
3: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।

0: मजा आया ना? अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। है जी, क्या बोला? केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। ओ यार, आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सब ने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वो वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
1: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियां क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय, मेरा नाम है चमकी और आप?
2: अब्दुल रहमान
1: जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
2: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
1: और आपके गाँव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियाँ होती है?
2: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियाँ जैसे लौकी है।
1: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊँ, मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ? हाँ, गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
3: मेरा नाम शांति है।
1: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती?
3: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
1: हाँ, सिर्फ आलू? हाँ, फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
3: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
1: अरे, मेरे गुड़गांव के दोस्त तो कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय, आपका नाम क्या है?
4: हमारा नाम है लक्ष्मी बाई।
1: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
4: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देती है।
1: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियां खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
5: पालक।
1: ओ, फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
5: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
1: हाँ, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा, आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियाँ कैसे खिलाती है?
6: मैं वैष्णवी को पालक कहानियाँ सुना के खिलाती हूँ।
1: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियाँ खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं।
4: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालू 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए इनको निकाल के रख देती हूँ, पर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
1: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना, ठीक है दोस्तों? ओके, बाय
7: बाय।
0: मजा आया ना?

0: दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था यानी के गुगली महाराजा। वही बात, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई है भाई, हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है जैसे, तो इस पर पेड़े भी कितने हरे हरे हैं तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं, और जब पेड़े सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती है, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते।
1: तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हमारी हरी सब्जी है जैसे लौकी है, तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक है, तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पालक पनीर ही बनती है ना, तो वो वैसा ही बना सकते हैं, तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
2: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए।
1: जी, आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं तो, कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले। और इसके अलावा कि तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

से आई घर की हुलिया बदल गई, जितना से आई घर की हुलिया बदल गई, लड़का और बिटियन का ऐसी अकल।

0: श्रोताओं नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनेबे बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे आपकी रेडियो दोस्त वर्षा, लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत जी दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपनों ने क्या कर रहे थे एक कार्यक्रम के माध्यम से जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने है गो और उतर के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है, तो अपनों ने कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें वो जगह को घुमा देवे। एक कथ है ना कि अपन सुन के भी सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के वो जगह पे पहुंच गए और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो उसके बारे में तो है कि नहीं। सो अपन ई कार्यक्रम से आज आपको ले चला देंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उके बारे में भी अपन और ई कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी। कह के पहुंचवे में तना टाइम भी लगे होते, ठीक है। तो चलो अपन सैर करवे चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

बैसबावर मिल चैन धतान, जिनको पानी सुधा समान, पर्वत जंगल आलीशान। तो जितनी गर्मी उतनी वर्षा।

के सब तुलसी भये महान। तो संत कभी दुनियन की खान, तानसेन की गूंजे तान, के सब तुलसी।

0: पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोकगीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड, भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहां बहुत ही लोक लुभावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी।
2: श्रोताओं, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं सीढ़ियां।

0: चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर। जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है, और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम जो पुजारी हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
1: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से है, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट का फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी माँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है, उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुम देव हुए हैं कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे जिन्होंने की, फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है, वाणी से प्रमाणित नहीं होगा। यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, तुझे मंदिर का निर्माण करवा। मंदिर का निर्माण करवा के पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है। अच्छा, माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं, और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है, और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है। जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 2251 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है, और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं, जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघनाशेहु तबहि। 11 वर्ष से यहाँ रामायण

0: चला रहा हूँ जो निरंतर गति में है, और ये तपस्थली, भजनस्थली, तंत्रस्थली, सिद्धिस्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है, और यहाँ पर 2251 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं, सब दक्षिणावर्ती हैं, और यहाँ भक्तों श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी आते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी जैसे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में? कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं, या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं, और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पुताई स्वयं करते हैं, रख रखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासन के या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पर 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं ने और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया, और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है, और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए। आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों, यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपको शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर्ड शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे।
1: तो आप यही के हो?
2: यही के।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसो महसूस करत यहाँ जन्म ले के ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कह चाह रहे यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, देवी जी की उनकी कृपा से हमारे सब भंडार भरपूर है, और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फलपूर रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से घटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें, और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है, यहाँ पंडा जी बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना, सबको
1: रामचंद्र जी का मंदिर है।
2: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। हाँ। और वो जो है किराए पे, मतलब ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियाँ उसमें रामचंद्र बोल रहे हम देखे, और बहुत बड़ा है मंदिर।
1: अच्छा।
2: उसको उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी जगह है।
1: अच्छा है।
2: हाँ, बहुत बढ़िया है।
3: तो साथियों, अभी हमने चनेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का, सो सुनते हैं एक और लोकगीत।

साथियों, अभी हमने धनकुंवर किशोर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गांव की कोई विशेषता है, आपके गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं। 9425-14-17-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने, 9425

चार एक सात दो छह। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारी इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आप दोस्तों सुनते ही कहानी को लेते ही कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुआ के राजन के कुंवर
2: आओ
1: और एक हते बानिया के लड़का।
2: अच्छा, मतलब एक हते राजा के कुंवर,
1: एक हते बानिया के।
2: आज दो जने हो गए।
1: हाँ। अच्छी तरह से गए उनकी दोस्ती।
2: हाँ।
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम काज के पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबन खून चले जा गए।
2: दो ही चलो
1: दो ही करो शिकार भी अपनो घूरो मस्के भी अपनो घूरो मस्के। अब जब वन में पहुंच गए तो जा शिकार खेली बा शिकार खेली खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बर्ती तुम्हें फिर कर गया।
2: अच्छा,
1: कल के दिन में भी बोले बोले कर ले बीरन बोले। अब बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल देखे। अब राजन को तो बस बीरन थे अपने बानिया कितना से कर बीरन।
2: अच्छा
1: हो भी है बस।

0: ইয়ানো বাদশাহ দোনো ইয়ানে হো কাই কা রাজা হই বাদশাহ
1: হো
0: তো বাস বিয়ান না জি সো বার মার বানওয়াই দাড়ি ফাড়ি বানওয়াই বার ছাটওয়াই কলে কাবিয়া কা কি জানি ছতে কলে সসারে যায়
1: আচ্ছা
0: अब जब नाव घेगो से नाव को रख तो गांव भर को के फलाने के ब्याह है फलाने के लगन है फलाने के सतकरा है फलाने के पक्या से
1: जा सही के यहां
0: नाव को सब पतो है
1: हां
0: तो नाव को तो राजन की कुमारी की ससुराल को पतो
1: ऐसा
0: सो बस अब वीरन के बार बन गए
1: हां
0: अब राजन के बादशाह के बनने
1: हां
0: तो बादशाह के बार बने
1: हां
0: तो बादशाह बोले बोले कर ले कब निकल राजन के राजा निकल बीरन तो जा रहा ससुराल है हमारा हम कैसे चले जावे अरे वो निकल राजन के राजा आप किसी ससुराल तो पृथ्वी पे काउगी है ही नहीं है
1: अच्छा
0: तो बस वो निकल अच्छी सब भी तीन जने हो गए
1: अच्छा
0: के नाव होगा बादशाह होगा बीरन हो गए अब तीन जने की दोस्ती हो गई बस सब चलिए ससुराल के जाने तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी तो बा में बीजक लगवाओ तो कि जब वीरन की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई
1: अच्छा
0: गली कुएं में से बटी लगी उन्हें लगी प्यास तो राजन ने हुक्म ढीलो चलो वीरन पिया पानी वीरन का पानी पीवे के लाने तो बानी बीजक बाँचो
1: अच्छा
0: बीजक बाँचो बामे सू में गलियां अलग अलग वीरन हो बदमाश वीरन बदमाश हो
1: अच्छा
0: तो वीरन ने का करो किस्ता के पानी पी के बावरी में और वह बीजक को भरा दो
1: ले उसका
0: अगर हमारे आ गए जब बीजक को जो राजा पानी पीवे आ रहा तो जब बाचे ले संग छूट गो इसे कह हमारे जी ससुराल चलेंगे
1: चलेंगे
0: तीनों जने
1: तीनों जने
0: जा पे वीरन बदमाशी के रहवा तो बस अब राजा पानी पीवे गए तो राजा ने पानी पियो जो तमाम भावरी में है सुबह में बीजक में गिराव लगो तो राजन ने अपने खोबन की उली सुलीच के भाई
1: धुदाओ
0: धुदाओ और फिर उगे बाचो बाचो भाई सुबह ने उनमें प्रधान पूरा लिखो कि जा राजन की कुमार को रास्ता गई और जा वीरन की कुमार को रास्ता गई दोनों जने तो बोले क्यों वे वीरन बोले ये राजन के राजा बोले तू बहुत बदमाश है बोले कल्ले पुरखन को बीजक तेने मिटा दिया है हट कल्ले के हम अपनी ससुराल जाते हैं अपनी ससुराल तो बोले कल्ले उनकी शर्तें लग गई बोले कल्ले जो पहले आज विदा करा के वो जो बाउरी पे ठहरे चार दिन कितने को बीत जाए
1: सही सही
0: तो बस भी अच्छी सब भी अपनी ससुराल चले गए और भी अपनी ससुराल कर ले वो जी सताई रखा नाव बोले कल जी राजन के संगे चले
1: सही है
0: अरे हमारे वर के संगे का चले हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी और हेल्पर चलते हैं कल जी तो राजन की कुमार और सताई रखा दो जने जा रहे वीरन अपनी ससुराल चले गए और सब राजन के कुंवर जा रहे सो बन कजली में पहुंची तो अब राजन के कुंवर को लगी प्यास
1: अच्छा
0: बोले कल सुताया कब बोले कल के ये राजन के राजा कल हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर सही से प्राण निकल जा रहा
1: है
0: इसे पानी को देखो बोले कर राजन के राजा बारह कोस में ना है पानी ना माए पानी अपन वन में हैंगे बोले कर ले अरे क्या क्या बोल रहा है नाग का के बोले कर ले हो महाराज सुबह एक का खैबर पे चढ़ी सुबह देख के भी लंबे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो गई चढ़ी तो ये कुत्ता दिशा में बगली मर रहा है तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी इधर होगा
1: बिल्कुल
0: तो बोले कल राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर्रा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती है पानी जल्दी हो गया उठे बोले कल चल चल ले जा सुबह लोटा घड़ी लेके और चल अरे खुल जाए

0: सुबह जन्म दिया पाई खुली से जीत गई थी यहाँ फिर बाहर आराम से मिले आराम से भी नगर चली गए काकिस्ता हाथों के जानवर लड़की राजा ने खूब ब्याई थी वो नदिया में स्नान कर रही
1: अच्छा
0: नदिया में स्नान कर रही थी सुताई अक्का ने कहा करो झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंचो।

0: लहू तालाब है, वो बड़ी अजीब का लड़की छपर रही है, तो उसके साथ हमारे मोर चाचा के गिर पड़ी तो हम तो सब मचे सचो भर लिया, वो हम खुद प्यासे मर जा रहे। अरे बोले कले बगरा भी सुबह पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए, तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद नहीं वो कल्ले सुधायक का बोले कल्ले कही राजन के राजा बोले कल्ले इसको लड़की को पूछने तो जरूरी जब मुंह बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें ताला ताए को बोले कल्ले कहो उन्हें कही

0: नवकक्का ने कही के
1: नहीं राजन ने कही जावा
0: राजन ने कही जावा
1: राजन ने कही जावा उनने फिर कही उनने अब्बा बोले जल में ठाड़ी जो
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही
1: बा बोल रही है। हाँ।

0: चाहे आपका बोले कल्ले राजनीति राजा, सुनो हमारी बात, अभी से बोल दो ना।
1: सही है,
0: अभी से बोल दो ना, बोलो कब का बना दे वाले
1: बताओ।
0: हैं?
1: सही कही।
0: बोले कल्ले नहीं, अबे तो हम इससे और बोलेंगे।
1: हाँ
0: अब राजा बोल रहे हो,
1: हाँ
0: भूले वो।

0: गलिया लेखो बता दियो लगे काहू के हरिद्वार जी।
1: इन्हें गली बता दो सो काहू के द्वारे लगे
2: पहुंच जाए।
1: अब कहिए हाथ उठाते हैं अगर बता दीजिए। अब जल के भीतर हुई, अब इनको समझ में नहीं आ रही जल के जाए। इनको बदन शरीर है कैसा, मुंह करने मायक है और पूछ करें इंतायक है। कई के अब ऐसे बताया तो निकल बाल है। माँ शंभा बोली,

0: अब भाभी मन से उत्तर दे रही है।
1: अच्छा,
0: अब भाभी को उत्तर दे रही
1: है।
0: मुझे कान लालन दी ने के कारो।

0: बिल्कुल क्या तुम
1: दबावी ने ऊंचे कनेरा नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ
0: ऐसे
1: और तुम्हारी आ गए चाला
0: अब लुबग्गा आ गए तुम
1: लुबग्गा उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
0: ऐसा
1: भाभी से कही सुबह सुनने घरेला उतार के अपने नाश्ता बनाने के लाने तैयारी की तैयारी करी अब इन दोनों ने करी चला
0: अच्छा
1: बोली कल देखो अपन को कगुआ गेल कुमार बनाए थी
0: बिल्कुल
1: अब भोजन नहीं करने भोजन नहीं करने इसकी यहाँ अब खुला खुला थे अभी खुलो हमें तो सलाह दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की सभी सुनने व्यंजन की भोजन बने भोजन बना के और अज्ञा दे गई भोजन की लाना तो दोनों जने भोजन को गए भोजन को गए साफ सुनने चाहे एक ले चाहे खाई हुई चाहे दो खाई हुई और वहां से बने थना ना जवाब ठोको
0: अच्छा
1: ठोकनी ठोकने ना तो भेज कैसे खोले वहां
0: सही है।

0: नेता थी सरकार के माय कच्ची अब अभी खुलवाओ के जई है जा
1: हां सही कह रहे हैं जी
0: जब बात है कि होते होते जब बाबा ने बात खोली सो बोल समझ गए सो उनने माता की माटी सरकार के ओ बस सोचा जा काने पर झटपट जो कछु राजन के की तुम बाप बांधी
2: हां
0: ओ बाप नी बांधी ओ बस चाची माटी जो कर कमे लोग बाकी कर लगा है कह रहा है बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल महाराज मैंने अपनी चाची धोई वो आपकी धोई तो फिर मैं आया हां
1: जैसे टाइम लगे
0: जैसे टाइम लगे हां बोली कल सुन ले कल सुत्ता ना उन पाए वो अपन घूरो कस के तैयार हो इस पापन को मिलवा जाने इसको मिलवा जाने सुबह सुबह तैयार हो गए जहाँ से तरा उनको तो उन्हें भज्जा घूरो कसो सब रात में घूरो कस रहा सुबह ऊपर को पले चवन पीटने कस रहा
1: अच्छा
0: तो क्या है कि ऊपर का पलेचा नीचे कस दिया गया तो उन्हें भज्जा छोड़ चार के दोनों राम के पास है जंगल झाड़ी बाहर निकल उठे निकल के भाभी पूरा परोस की जनी ने दुहा दो रेशम डोरा पाटे कोरे जले दियो रे चाटे

0: देखो रिश्तेदारी है,
1: सही है,
0: वो जब तुम दिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं, वो जुड़े शुरू में गांठ पर
1: जाए,
0: गांठ पर ये जाम है,
2: तो बस ये दुखते
1: हैं नहीं गए
0: उनके तो रुक गए जो पड़ोस की ने,
1: पड़ोस की ने कई जवाब
0: हो, तो पड़ोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराऊ तो केर बेर को संग है,
1: सही है,
0: बेर भर के जाओ, तो उनने हदीसो जैसे कछु पुटिया पर मुद की कोई राना में ले गए,
1: फिर मई खून पाया ले गए,
0: मई खून वही जहाँ उनकी राना सकी
1: फिर
0: पहुंच गए भाई सतखंडा पे पहुंच गए। तो अमन ने सोची रानी ने कि अगर भोजन दे तो ये भूखी, अब रात को है समझ गया,

ना हो तो हम भोजन में ही ले जाए तो भोजन उनमें से लगा थाली को भी पहुंचे तो लगा थाली जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पहनी थी भी तो वो बजो बिस्किया बजो तो उनने बिस्किया की आवाज के सुनकर मोर बोल गई बन गई और असम दो भाग गया संत।

अरे भोर जी, अरे अबे नहीं खाओ नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोला नहीं से, लेकिन बाने खरीदो हा जाकर।

जी कामनी अरे खोलो का अरे के बार जी उन खोलो कंस के बार लेकिन उनमें नाव से कई कैसे बार नहीं खुल गई अब जो जो है सुनो साधु ने साधु ने सुनो दोहा साधु के राम से

0: शंख बजे से साधु जगे, बम घले राजभूत। अगर इतने में के बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कुछ कब पूछे थे।
1: सही है, है? का हो
0: का हो
1: कत्ते दुनिया भगत जाए मेरे विश्वना का जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पतो होगा, रानी राजा के पास मिल गई। अब फिर की दो भाग कह रही है। ऐसी

0: से लड़ा की भाली रे सो मेरी पे ब्याजी। अरे ऐसी सासों का काम किया थी तेरी कुखन बांजाई हो जाती। ऐसे सब कुछ जाए तो लड़की होती तो परोस मेरी पे ब्याह शादी कर देती।
1: तो बोला थी
0: ये तो कर गया है ना यार सुबह पटक थार
1: और भी भाग गया।
0: जब थार पटक के में भाग आई सुबह अपने घर में अब रात को समझ गया कहाँ जा रहा है जो सबीवन हो सोने घूरो मस्को कुछ चलिए। तो ससुर साहब ने कही करी दीमान जी ऐसे नहीं चलो हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुलाओ और भोजन करो भोजन करके हम आपकी विदा कर रहे। ठीक है जो भी रहती है जो डच गए खाना खाओ खाना खा के और पीने सुनने सजाई तो उन्हें विदा उनकी कई गए उन्हें खाना पीना सब महीना भर की लाने रखता खा के जे घरे चले गई। बस अब हतीसु अब पीना हकावे बारे हतीसु जैसे गांव के बारे करी तो उनमें मार जताई फिर भी भक्के छोड़ के अब खुद उनमें हकाई अब सुताई अब काल है कबाज जी ने हकाई सुबह हका के हो वह सब कहीं ऐसी और चली होंगी तो शाम हो गई से एक बमूरा को पुलो रहे से उतरे।

बस गए, शाम होगी से बस गए। बस के में अबू लेकर ले सुनो सुधा कबू लेकर ले का कल पापन को ही छोड़ जाने यही रुकता है। अब्बा सुन रही थी, बस सुन रही थी, सुबह ने कही के ठीक है। सुताई अक्का से कही के सुताई अक्का ओदा दौरा नहीं है के पति लगाओ। सुताई अक्का गए से तीन पात्र में लगा दिया, एक अपन को, एक राजन को, एक रानी को। ये तीन पात्र में कहा खोलिया? बोले कल एक आपको, एक हमको, एक रानी को। अरे बोले कल रानी की फार के फिर जमा, रानी की फार के मार फिर। अब बस पात्र लगती आई तो खाना खाओ, खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के हैं, इसे का करें। जिस सुबह घोड़े की पछाई की जो ये रहती बजटवा बडोर बंदी थी, सुबह छोर के बाने पीने से मार लाई बडोर को। ये भगे तो जब ये टूटे समय यहाँ का अगर हम सो गए, आँख खुल जाए तो हम इसे कचू के ले। सुबह सुनने थे सुबह घोरो भंसाई रात भाई को बड़ा सुबह तनो वो तनी बडोर कहीं दूर सो नेक चाबा को ठोको घोरी में सुबह दूर टूटी। सो उनने कही रानी

एनर्जी थी, हर में बुझा गई हमें। हम न जई गांव के रहे, न बई गांव के रहे, अब मिशन निर्वारे के चले गए। ये अपने भवन को चले गए। अब रानी ने अति सुबह घर हकाओ को रानी को गाड़ी हकाऊ थी, हकाऊ थे रानी तो हका जो वैद्या से कचुवती तो राजा गिरंद की बाग में भी जा रही सुवन्य भज्या घर वन्य ना के तूपी माई की बोलन्या तूपी बेहती जो रानी वो तो मालिन हती जो मालिन गोली गोली कर लेगा। ये कौन कहाँ की पाप नारी कहती है तूने? एक मोर रानी ने वो मालिन खुद दे बहु में भीतर कार में बाग में बीरा दे जाए। अभी तो राजा की बेटी थी तो कछु मोरन को कछु टूटो है तो रही हकी भी तो बस बेहती तो अपने इंतजाम में अपने कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सूर्य सिंह कच्ची बिला दिना हो गए दुकान दुकान। तो एक दिन अब उनकी बेटी हती राजा की यानी जमदीप नाव तो का नाव तो बेटी को जमती नाव तो बेटी को सो बिन दो फूलन की तुला तो लगती हुआ सुबह मालन रोजीना डाली लगावे और फूलन खोल ले जावे। राजन महती सोची के अब मालन तो इतने आऊ तो हम आज बगीचा घूमी आए तो बगीचा घूमन गए भी सोचे बार राजन की लड़की रहे रहे। तो राजन ने सोची कि ये तो काछी माछी की तो या है नहीं है, है तो को राजा की लड़की सुबह जैसे कैसे अपने घरे पहुंची। घरे पहुंचे सो घरे पहुंच पाँच के उनने कही अब्बा से कही मालिन से उनने कि माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ। तो उनने डाली उन्होंने लगाई रानी ने अब बादशाह ने हती सो राजन की पियन न्योता बाबे न्योता कंकुम अबे न्योता पियर को। सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हती बादशाह की तो अपने उन्हें थारी लगाई दो उन्हें परसों बिजना की हवा कर रहे बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह की। सुबिन ने सोची अगर बिन तो हमारे खुलवा लिया उसी बन में ना छोड़िया उसी भाई ना करती हवा

शून्य हर सांस लगी। तो बीजन ने सोची कि कोई बात में खरखसा है, राजन की बात में कोई खरखसा है, सुनना उसे पूछी जावा। बोले क्यों खवास रखता? बोले कले कहिए राजा, कले कारण का है ई को? राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे। कले ये रानी को वन में छोड़िया और भग गया। तो उनने अति से घोरो उनने सजो और बीजन ने सजो और पहुंचे बोले कर ले चलो बताओ कि कौन छाड़ो छोड़ी। फिर जो रुख तरह छोड़ी थी वही रुख तरह जीत गए दोनों जगह नाव नहीं गए वे दो ही गए। दो ही गए सो बोले कर ले अब उनने हती सो वह गाड़ी वर पीनस की जो रास्ता थी वह धर ली सो मालन के पास भी पहुंच गए। राजा दिलंद की बाग में और गए पहुंच गए सो उनने कही ठीक है उतिया जाके इनने का किस्सा करो कि डीरा दो जन ने गए सो उड़ने भैया मालिन ने उन्हें घर आए बोले कल्ले क्यों रे कहा हो परदेसी कैसी फिर जाए तुम जगह बात वो हमारे राजा सुन पे तो तुम्हें जान से मारा ले। हाँ सुबह आराम से मालिन को साधा तो मालिन से पूछी सारी बात तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है और रंग महल में पहुंच गई राजा दिलंग की। अरे कमाओ ने वास्ता तो बदमाश होते ही है तो कौन जो रूप काट को वो रूप काट उन्हें उपद्रव सारे करी सो माल नहीं जोर में पहुंच राजन बोली कल दो घोड़े वाले आए और भेजा के और बहुत परेशान कर रहे उनने सब नाश कर दिया बगीचा को। सो ने चल गया चलिए तुमको राजा बुला रहे जब तभी ऊंची हती भीलपुल की और जहाँ से वे सज बज के फिर गए अपने अपने घोड़ी लेके बोले उनकी गैल में सलाह हो गई बोले कले तुमसे बात करे से तुम मुँह काट दियो और हमसे बात करे तो हम मुँह काट लें। बोले ठीक है सुबह गए सो राजन की बगल में की बोले बैठो बोले बैठो। अब उन हतो एक बीजक राजा गिलन कि अगर जो बीजक जी लोग पहुंच गए हम उस लड़की की शादी उसी के साथ कर लेंगे। तो अब उन दसला हो गए बस सका से काम लगाओ। अब वो रानी ने डीरा जाओ डीरा जाओ कि देखो भाई राजा गिलन ने जो बात खो बोली कि तो हमारी रानी बन जाओ बोली कर ले नहीं ये राजा गिलन को बाग कटे चलिए और जो मकान गिले चलिए सुबह ने कही तो ठीक है जो काम लगो सुबह अपने मजूरी खोने की जावे जावे सुबह रानी जो बबेटी अति से छाजे पे दातन कर रही थी तो बीजक लाई थी बीजक वही लोटा के करती दातन वो लोटा में लिखो है तो सुबह बीजक खो गई जो बादशाह ने बांच ली बीरन बांच ली बादशाह ने बीरन ने बांच ली बोले कर ले ठीक है बोले कर ले तुम तसला पटकट पटकट कर वो तो सार पांच ही की पड़ रही और तुमने पहचान नहीं कही कसी वक्त तुम ना तुम सानो हम ये डारा सुबह गए डारा सो आराम से गए डाल भी के लाने से तनक तसला में से गिलाव पहुंच के वो इमेज दाओ वो बेटी में दवा में जो राजा गिलंद की लड़की सो उन्हें अति सो अब जो खिलाड़ी है तो उन्हें बोई लोटा दाओ बोई लोटा उनमें दाओ सुबह ने थल गेंद की बल्ला के और बल्ले लोटा हो गई बाग में पहुंच सुबह सुनने फिर भेज छड़ गया पकड़ लिया सुबह जब भी गए पकड़न सुबह देख दाग के कर ले ये कौन मजबूर हैं ये तो कोई राजा है सर तो क्यों इनसे बोलत कैसे हैं बोले कर ले महाराज तो नहीं है मजबूर संजीव तो जो राजा पर बोले कर ले जा पर बोले पकड़ लिया सुबह जब बोले कर ले आ रहा चलो अब दुनिया में लग गई थी वो बीजक वो बीजक उनने वहां से लाओ पूरो कर ये कब दो मिल रही दो मिल रही सुबह लेकिन भाई उनकी सलाह तो बहत गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट ले हमसे करे तो तुम काट ले सुबह राजा का उसे बात ना कर ले चुपचाप बैठे रहे दरबार में भगवान एक दिन आते बोलने में रुको क्या पहुंचे राजा ने कही

0: बोले कल्ले कवि साहब कहाँ के रहने वाले हो, कैसे हो? बोले कल्ले के दीदी। फिर वह लड़की की शादी करी उन उनकी रानी ने हती बात तो हो गई।
1: देखो दोस्तों, जातो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है, यानी कि कहानी खो सुनी है, और एक किस्सा को आनंद लाओ। अब एक संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय, तो अपने दोस्त को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी, फिर हुई मुलाकात एक कार्यक्रम में एक बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

सुनो तो जे काके रे अपन खा जी बताहे अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव तो सुनो जी काके रे।

0: रेडियो बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को भैया अपने काशीराम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सब जन के लाने एक बहुत ही नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं, जिको भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाव है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयन की बातें करें और सुने। और एक क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करें और जी अपन को कुछ बताएं। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को, जी को भैया गाँव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम की पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के, अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: हाँ तो भैया अबे सुनो, अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जी ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन गाओ के सुन बताओ है, और अपन सज्जन ने सुनो है। अब अपन बात करत है राम गोपाल कुशवाहा जी से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपनो दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन काके रे विवाह हो दादा?
2: केना के पूरा पटक गया हम केना गुलाटी कमगर कैसी नेवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा का करत रहे
2: जी? हल्को हल्को काम कर अपने ढो बच्ची देखे ना।
1: और
2: वर्कर हम करा बस किए काम वाम हम रह तुमने।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से कक्के विचार जब से तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता रहा कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिखते हैं उन लगत और का परेशानी दिखते हैं आउती है अपन का का
2: बुढ़ापे में? तो देखो ना खाना मुड़ा एक बात देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ लिंग नहीं पाओ घूरे फिरार हर एक बात की मतलब मुश्किल दिखा दो अगली बार।
1: और वैसे वो समस्या है अपनी?
2: वो समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है तो भी हमें ले आया तो हम खा रहे हैं।
1: अपने मोड़ी मोड़ अपने पास बैठ भी आओ।
2: आओ बैठ भी आओ जी नहीं आओ थे तुम साथ हैं।
1: अच्छा
2: अस्पताल जाने
1: हाँ। और अपने सेवा खुशामत के बारे में आप क्या कह सकते?
2: सेवा खुशामत सब करा चुके जनाब जी बैठे अब बैठे भी है मतलब जो लोग ठीक नहीं है चला फिर निकल लगे
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका था?

0: सकत। आप में तो बैठबो है, सीधी बात है, पैसा जो खर्च तो चाहिए है। अरे कछु नानिया कछु नहीं तो 10-15 उसको तो खर्च किया ही आदमी को मान के चलो कछु ना कछु वो 10 उठा के चल जाते
1: हैं। भाई आपको कैसे कटत?
0: उनतान दिमाग लगा ले सिगारे सिगारे अपने छाने में चल बस।
1: अच्छा वो अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं ऐसी?
0: हाँ
1: जैसे का आप बुढ़ापे की
0: बुढ़ापे मतलब
1: दिक्कतें आदमी का
0: दिक्कत तो देखेगा नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो जो जो नहीं बांस पा रहे हम मतलब और उसी ही दिखा कागजा नहीं बांस पाऊ मुझे दिखा सकते।
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकत हो? खावे पीवे की आपकी का इस्तेमाल है?
0: खावे पीवे की कौन तभी नहीं आ रहे जो घर में है तो खा रहे।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में और बेटी में का अंतर है?
0: चलो इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत रहती इज्जत नहीं आया और पापा जाना फैली अरे पापा जी जाया फैली मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा हूँ आदमी हमारे वाले बच्चों जो चीज मिल जाए हमारे मिल जाए दूसरे की जटाने न मिल गए दीवानी न मिल गए ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में।
1: तो अपन का के वो चाहते कि कैसे हो चर्जी अभी के सब
0: जब जो हो चर्जी शांति हो चर्जी प्रेम हो चर्जी सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कभी आपत्ति नहीं है प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति नहीं आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कभी आपत्ति नहीं आए।
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छो हो सका
0: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदारी काम प्रेम में उबर का जो काम नहीं था प्रेम में मतलब जीव अजीव काम प्रेम
1: लड़ाई झगड़ा ना उज्जे पैसा टका खर्च ना उज्जे
0: हाँ घरे पैसा रे जो मतलब झगड़ा वो काम निकल।
1: तो अपनो काके वो है रेडियो में जो भी आपका सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चाची और कैसे रहें चाची आपका कंचाऊ सब जनन से आपको काके वो है
0: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब बाप मताई की सेवा करें
1: तो वही बात बड़ी बात शुरू से आप
0: यात्रा ना कची
1: यही बात है आप यही बात पूछना
0: चाहूँगा
1: बता दो आप आप काके वो चाहते
0: जो अपने बाप मताई को माने भगवान उनको माने सब इज्जत रहे प्रेम रहे लक्ष्मी जी रहे सब मतलब नहीं के रूप है बाप मताई को छोड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चे छोड़ा मतलब आगे चली जाइए तो मतलब
1: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे
0: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे निकलते हो तो जाकर आ रहे जो मतलब है जब तो चले जाओ पैसे आगे चले जाए अब जैसे पैसे ही नहीं जाते कहा जा रहा है क्या करे रोटी नहीं खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है टेंशन बन जाए तो अच्छी बात है।
1: और का के वो चाहू था
0: जी उचाऊ के आराम चाहू बस मिल जावे टेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाऊ गए लड़का वाले अपने बाल बच्चे को समान खाने दीवे 300-400 महीना मिल गए तो अपने उम्र खर्च चलाओते।
1: ठीक है दादा जहाँ आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भैया अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है। और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते कौन आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखे चारो धाम कर है। और भैया ये तो बातें अपनी अबे हतीसो सब जन ने सुनी ही है लेकिन आप लोग जा भी कह रहे हो को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताएं तो अपन और सुनत है एक गीत खो और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा के गोबर मंगाओ यानी गऊ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही है और शुभ संदेश की बातें कर रही है और संदेश दे रही है। तो भैया अपन सुनो सवई पंच भैया सुने

हाँ तो भैया अपन और सुनत है एक गीत को, जी को गा रहे हैं उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाएं। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

हाँ तो भैया अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम, सुनो जी का कह रहे, ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं, और ऐसे ही हम हर रविवार को लेके आउ थे कार्यक्रम को सुनो जी का कह रहे। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत हो तो हमें जरूर बतावें, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करें चाहू थे तो हमें सो बतावें भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से, तो भैया देव आज्ञा और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हुई, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को। तो नमस्कार।

सुनो तो जी काकेरे, अपन खा जी बताए अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव। तो सुनो जी काकेरे,

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार हो सो कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे
2: हैं? दीनदयाल बोल रहे सर।
1: हाँ दीनदयाल भैया, कैसे हैं?
2: सर बढ़िया है।
1: बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
2: सर सुनवा लीजिए, वो गीत है ऊंचे पहाड़ में से मैया बैठी रतनगढ़ वाली।
1: ऊंचे पहाड़ पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
2: हाँ जी सर।
1: चलो भैया, दीनदयाल भैया हम आपको जरूर सुनवाए हैं जो गीत। और कहा हो रहा अपनो?
2: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप ऐसे फोन लगा उतरा बुक करें।
2: ठीक है सर।
1: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार नमस्कार सर।

0: नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों के पास ऊपर वाले की कृपा है और सब बहुने वाले हो गई, पानी आने लग रहा हो।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बंदली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो?
1: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
0: प्रियंका बुलबुल जी की आवाज में?
1: हाँ।
0: चलो ठीक है। अच्छा गीत के बोल बता पाए आप?
1: एक गीत कोई गाओ सुना दीजिए थोड़ा।
0: चलो
1: बोल तो हाँ, बोल याद नहीं आ रहे।
0: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनाए।
1: ठीक है भैया, जय राम जी की।
0: जय श्री राम, जय श्री राम।
2: लाल दुपट्टा उड़ गए बेरी हवा

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का, तो वहां देखो एक बार

देख दिगंबर शिव शंकर का और भालचंद्र मुस्काए हैं और टपका अमृत बिंदु धर्म गोशाला पर था।

नादिया भागा। भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है देखिए। बिखर गया परिवार, बात जा बनी बनाई में, और सक जाने त्रिपुरारे अपनी हवा हवाई में।

रंग लाल है बिंदिया भाल है कंगना कलाई में और चंद छबी मुख चंद विराजी गोरा।

0: फूल शंकर से सगाई में मस्त रहे चलम।
1: हेलो बुंदेलखंड नंबर 1950 है।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरी गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
1: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
2: जुगियाव से सतीश साहू जी?
1: जी हाँ सर।
2: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
1: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है।
1: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
2: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
1: ओके सर,
2: नमस्कार भैया जी।
1: नमस्ते।

0: माता जी भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें सर वो वाला भजन सुना दीजिए।
1: कौन सा?
0: साथी मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी,
0: वही भजन सुना दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनाते हैं।
0: धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल, आप ऐसे सुनते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

आइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों हमारा नंबर है 94-25-14-17-26। बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

देखत ही देखत ही हर सा गई जो बगिया

बैठत भोला पदन संहारे कनिया सबरी पंख पसारे कनिया सबरी पंख पसारे ले तन रस मुस्क्या गई जब बगिया ले तन

0: हेलो
1: हेलो। हाँ
0: जी भैया, कहाँ से?
1: भैया नमस्कार। योगेश
0: नमस्कार जी, नमस्कार
1: जांगड़े जुनेसरा छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ।
0: जी। योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है। अच्छा है। मौसम
0: और मौसम कैसा है?
1: तो आज थोड़ा धूप खिला हुआ है। जी
0: अच्छा, धूप खिली आपके यहाँ? यहाँ पर धूप नहीं खिली आज।
1: जी
0: तो बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जो बप्पा जी विराजे हैं तो हमें आप फिर में जोरदार से सुनवा देंगे गणपति
0: गणपति
1: बप्पा मोरिया।
0: बप्पा मोरिया। हाँ
1: हाँ जी।
0: बिल्कुल। और सब बढ़िया है?
1: बाकी सब ठीक है भैया।
0: हाँ
1: हाँ जी।
0: चलो बढ़िया है। ठीक है, तो अपन गीत की ओर चलते हैं।
1: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, कहाँ से?
1: राम राम भैया।
0: राम राम राम राम राम राम जी, राम राम।
1: मैं राजू यादव, ग्राम उपरहका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला, राठ मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: जी राजू भैया, कैसे हैं आप?
1: हम तो सर जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं। और माँ गणेश जी की जो प्रतिमा रखी है उसमें पूजा अर्चना होती है सुबह शाम।
0: अरे चलो, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, मस्त व्यस्त ऐसे ही रहना चाहिए।
1: बढ़िया पंडाल लगा हुआ है
0: अच्छा,
1: और खुद अपना डीजे बज रहा
0: हो फिर तो बात ही अलग है।
1: है।
0: हाँ चलो, आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: कोई सुना दीजिए, गणेश जी का कोई बहुत सारे गीत हैं लेकिन कई
0: हाँ
1: लोग तो सुन रहे होंगे बहुत सारे गीत, तो इसी गीत
0: हाँ
1: में कोई गीत सुना
0: चलो ठीक है,
1: दीजिए।
0: अपने गणेश जी का गीत सुनते हैं।
1: कुछ लाइनें कह दें,
0: हाँ
1: जाए
0: बिल्कुल
1: सो जाए
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात के।
1: लिखा
0: जी
1: किस्मत में
0: हाँ हाँ क्या बात। हाँ
1: परदेश
0: जी
1: तो वतन की क्या याद करना,
0: सही बात
1: जहाँ रेडियो बुंदेलखंड ओरछा हो
0: हाँ
1: वहाँ फरियाद क्या करना।
0: हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
1: जितने भी इस समय लाइव रेडियो बुंदेलखंड ओरछा
0: जी
1: सुन रहे हैं सभी को इसी गीत में शामिल करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: राम राम भैया।
0: राम राम राम राम राम राम। चलो अपन गीत की ओर चले अब, हैं।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी भैया, कहाँ से?
1: नमस्ते सर जी। मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कळमनुरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहे सर जी।
0: जी मोहन भैया, कैसे हैं आप?
1: बहुत बहुत बढ़िया है सर जी। अभी तो खेत में ही बैठे हैं, गर्मी हो रही है, थोड़ी बारिश हो गई मगर थोड़ी गर्मी हो रही है, शायद
0: जी
1: पानी का संभव है। आज हमारे गणपति बाबा महाराष्ट्र में पधारपन है, आज विराजमान हो रहे हैं अपने जगह पे
0: जी
1: 11 दिन के लिए।

0: जी
1: हाँ जी, तुम्हारे इधर अभी
0: जी
1: बैठ थे सर
0: बताइए।
1: जी? ठीक
0: हाँ,
1: है ठीक। ये गीत है गणपति बाबा का, और देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन।
0: ठीक, ओके ओके।
1: हाँ जी, और हमारे साथ में है हमारे मेरा बेटा करण सिंह ठाकुर है।

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से?
1: सर जी, मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी। बहुत
0: जी जगदीश जी, कैसे हैं आप?
1: मजे में है सर, आपसे बात हो रही है तो अब और भी मजे में हो गए
0: चलो,
1: हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, आपको ऐसे ही मजे में रहना है
1: बिल्कुल सर,
0: जी।
1: बिल्कुल।
0: और आज गीत कौन सा सुनेंगे अपन?
1: सर आज मैं गीत सुनूंगा, फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, और लता जी और सुरेश वाडेकर जी की आवाज में गीत है,
0: जी
1: गीत के बोल हैं।
0: जी
1: हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के बारों महीने, जहां मौसम जाड़ों का। ये सुनवा देना सर
0: अच्छा,
1: जी।
0: और कहाँ हो रहा?
1: हाँ सुनवा देना सर, ये राम तेरी गंगा मैली का गीत है।
0: हाँ, राम तेरी गंगा।
1: राम तेरी गंगा मैली। हाँ जी,
0: जी,
1: लता जी और सुरेश वाडेकर जी की आवाज में गीत है जी।
0: हाँ
1: ये सुनवा देना सर है।
0: जी,
1: तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर जी। जी
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से
1: मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिलास सिंह तोमर बात कर रहा हूँ।
0: जी? हरबिलास जी, कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआ ईश्वर कृपा से बहुत अच्छी तरह से जी,
0: बिल्कुल बढ़िया। तो आपको ऐसे स्वस्थ मस्त व्यस्त रहना है।
1: और सबसे पहले गणेश चतुर्थी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी श्रोताओं को भी
1: जी। तो आज
0: जी
1: कोई गणेश भजन सुनवा देना,
0: जी
1: अगर ये मिल जाए। मुकाबला मुकाबला हो, मुकाबला भक्तजनों का मुकाबला तो ठीक है, नहीं कोई दूसरा
0: है?
1: सुनवा दीजिए। मुकाबला हो, मुकाबला भक्तजनों का मुकाबला। हाँ, फिल्म
0: अच्छा,
1: का नाम तो पता नहीं जी।
0: हाँ, मुकाबला हो, मुकाबला है
1: जी
0: भक्तजनों का मुकाबला।
1: जी
0: ठीक है।
1: ठीक है सर जी, धन्यवाद।
0: ठीक है ठीक है, धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप फतेह बिना अपने रेडियो साथी माते दिन भैया के संग में। और दोस्तों, आप सुन रहे थे जो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम को इतनी समापन होगा का समय हो गया है। सब रेडियो साथी माते दिन भैया को कार्यक्रम जावे ज्ञान अनुमति और चलत चलत आप सुनो पुराने हिंदी गीतन को लोकगीतन को आनंद। नमस्कार।

0: धारा।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम कप्ताएं, और कप्ताएं कार्यक्रम में अपन आज सुने कुमार विश्वास जी की लिखी भाई कप्तान को। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों आप देर ना करत भय सुनते हैं अपन एक कविता को जी ये कुमार विश्वास जी लिख रहे हैं कि उनकी खैरों खबर नहीं मिलती, उनकी खैरों खबर नहीं मिलती, हमको ही खासकर नहीं मिलती, शायरी को नजर नहीं मिलती, शायरी को नजर नहीं मिलती, मुझको तू ही अगर नहीं मिलती, रूह में दिल में जिस्म में दुनिया में ढूंढता हूं मगर नहीं मिलती। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं रूह बिकती है, मैं जहां रहता हूं उधर नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सुजा देखो कितनी बढ़िया कविता लिखी है और ये कविता को लिख रहे थे कुमार विश्वास जी। तो दोस्तों अपन ऐसी कप्ताएं आगे भी सुने और कप्तान को आनंद लें। दोस्तों एक क्रम में कायना अपन एक बढ़िया से गीत को सुन लें और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो आ दोस्तों सुनते ही बढ़िया से गीत को जी गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी।

बिल्कुल दोस्तों, राम नाम केबु करे धरे रहो मन धीर, ओ कारज बेई समार हैं सु कृपा संत रघुवीर। देखो कितना प्यार जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे तो भैया राजकुमार त्यागी जी और अमोल अहरवारी। अब दोस्तों एक क्रम में अपन कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाऊ थे, और कार्यक्रम में जो अपन कप्तान को सुन रहे थे सो कप्ता को सुनत है, जब कप्ता लिखी है कुमार विश्वास जी ने। सो दोस्तों आओ इनकी अब दूसरी कप्ता को अपन सुनत है। तो कुछ छोटे सपनों के बादले, कुछ छोटे सपनों के बदले, बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे। जाने कौन डगर ठहरेंगे, वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी, वही आंख में घुटकर मरती आंसू की खुद जवानी। हर मोहरे की मूक व्यवस्था, चौसर के खाने का जाने, हार जीत तय करती है वो, आज कौन से घर ठहरेगी। निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डहर ठहरेंगे। कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ होंठों में कैद तरानी, मंजिल के गुमनाम भरोसे, सपनों के लालच बहाने, जिनकी जिद के आगे सूरज मोरपंख से छाया मांगी, उनके भी दुर्मय इरादे वीणा के स्वर पर ठहरेंगे। निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। तो देखो कितनी बढ़िया जा कविता जो अपन ने सुनी है, एक कविता को लिखी है थी कुमार विश्वास जी ने। सो आओ दोस्तों अब कुमार विश्वास जी की एक कविता के संगे संगे अपन उनकी एक और कविता को आगे सुनते हैं और वो कविता को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो अपने रेडियो माता दीन के संग में। अब देखो कुमार विश्वास जी का लिख रहे कि खुद को आसान कर रही हो ना, खुद को आसान कर रही हो ना, खुद को आसान कर रही हो ना, हम पे एहसान कर रही हो ना। जिंदगी हसरतों की मैयत है, जिंदगी हसरतों की मैयत है, फिर भी अरमान कर रही हो ना। नींद सपने सुकून उम्मीदें कितना नुकसान कर रही है ना। जी हाँ दोस्तों, कि नींद सपने सुकून उम्मीदें कितना नुकसान कर रही हो ना। हमने समझा ये प्यार पर तुम तो जान पहचान कर रही हो ना। देखो कितनी बढ़िया कविता अजा भैया जी ने लिखी है कुमार विश्वास जी ने, और एक कविता के संगे संगे अपन उनकी एक और कविता को आगे सुनते हैं। सो दोस्तों आप और ऐसी बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। अब देखो भैया जी अपनी अगली कविता में का लिख रहे कि जब भी मुंह ढक लेता हूँ, जब भी मुंह ढक लेता हूँ, तो देखो आगे काले करके, जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरे जुल्फों के छाव में, जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। बहुत अच्छी बात कि कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। एक गीत पलकों पर लिखना, आहा, एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत होंठों पर लिखना, यानी सारी गीत हृदय की, यानी सारी गीत हृदय की मीठी सी चूटों पर लिखना। जैसे चुभ जाता है कोई कांटा नंगे पांव में, ऐसे गीत उतर जाते हैं मेरे मन के गांव में। पलकें बंद हुई तो जैसे, पलकें बंद हुई तो जैसे धरती के उन मन सो गए हों, पलकें बंद हुई तो जैसे धरती के उन्मान सो गए, पलकें अगर उठी तो जैसे बिन बोले संवाद हो गए। जैसे धूप चुनरिया ओढ़ आ बैठी छाँव में, ऐसे गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। तो देखो दोस्तों भैया जी कितनी बढ़िया कविताएं लिख रहे हैं और इन कविताएं को अपन सुन रहे हैं, और एक क्रम में उनकी एक और कविता को आगे सुनाते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90

104 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। तो देखो अब भैया जी आगे काल खड़े के जाने कौन नगर ठहरेंगे, जाने कौन नगर ठहरेंगे, कुछ छोटे सपनों की खातिर, कुछ छोटे सपनों की खातिर बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे जाने।

0: और मनोरंजन में सुने अपन बढ़िया से
1: गीत को
0: और गीत को आनंद ले हैं। तो देखो अब भैया जी कुमार विश्वास जी आगे का लिख रहे हैं कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे दिल ऐसा एक तारा है, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे दिल एक ऐसा तारा है जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है क्या एहसान तुम्हारा है। जो धरती से अंबर जोड़े, जो धरती से अंबर जोड़े उसका नाम मोहब्बत है। जो शीशे से पत्थर तोड़े, जो शीशे से पत्थर तोड़े उसका नाम मोहब्बत है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे के गहरी नदी हो सकत कोनो गुंडी सफेदी आए उते अपन हम जानी माया पड़ावन गन का तारी और तर गई मीराबाई।
3: बिल्कुल
2: उनने संगे जाबी कही के जिन जिन भैयन ने, जिन बेनन ने और जिन लोगन ने इनके आदर्श खा चलो है वो जिनने मन लगा के या कोनो बात मानी है या कोनो कथा सुनी है तो बे तर जात या वो माय पे पहुंच जात।
3: हाँ।
2: जैसे सुबह अरे पड़ावन गन का तर गई, अरे कितो काऊ ने भागवर या कोनो चीज सुनी तो सुन सुन के तर जात। और संगे मीरा भाई का जो लगन हती बावन की पूरी हो।
3: सही बात कह रहे हैं। और एक के संगे संगे कबीर जी ने और देखो कालिख रहे कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो तर गए सदन कसाई।
2: अरे भैया का बात है, अपन ने देखो तो इतने नोने तरन एक शब्द कैसो नोनो आगा के तर गए तरन कसाई।
3: तर गए सदन कसाई, सदन कसाई की कथा बहुत ही बढ़िया कसाई है।
2: हाँ।
3: कि सदन कसाई का काम करते काशीराम भैया जी के बे अपनो का है के उनको काम हतो के चोरी डकैती करके लूट माट काट करके और अपने घर को हम खर्च चलाउते। तो एक दफे की बात है के जब वे लूट मार करके अपनो जो काम चलाउते वो घर के सभी सदस्यों को खुआते कमा कमा के, तो एक बेर भगवान जी उतर से निकले और भगवान जी ने कही कि आदमी को एक कल तो थोड़ी वक्त देना चाहिए कि जब तुम जो काम कर रहे गलत काम और तुम्हारे ये गलत काम में तुम्हारे घर के भागीदार है कि नहीं है। सो भगवान जी उतर से निकले सो उन्हें कही के जिन इस भगवान को गला पत्रा सा फड़ा छुड़ू लाओ। सो उन्हें कही के भैया तुम जो लूट मार काट करके कहाँ ले जा, तो उनके अपने घरे ले जा और अपने घर के परिवार को खुआ पियाओ तो हमारे घर की आजीविका चल रही। सो इन्हें कही जा बताओ कि हम तुम्हें सब दे रहा हूँ, चलो ले जाओ तुम, लेकिन तुम अपने घरे जाके और जितने जनन को खुआ पियाओ थे उन सबसे जा पूछो कि हम जा हाय हत्या को ले आ रहे मार काट करके ले आ रहे तुम्हारे हमारी पाप में भागीदारी हो के नहीं है। ठीक। सो भैया जी गए बोले यहाँ तुम भाग जाओ, उन्होंने कही हम ना भागे तुम हमें पेड़ से बांध दो। सो फिर वे बोले हाँ बांध दो। अब बांध के जे घरे गए, घरे घर भाई से पूछी और सबसे लड़का बांध से पूछी कि काय भैया तुम्हारे जा बताओ कि हम जो हाय हत्या को ले आ रहे, हम जो हाय हत्या को ले आ रहे हमारी पाप की भागीदारी तुम्हारे बनो के ना बने। तो घर बार बोले हम काय को तुम्हारे पाप की भागीदारी बने, तुम कर रहे पाप से तुम भोगी।
2: माता दीन भैया इतने तनक कछु बात का है कि उनके दिमाग में जो कसाई है तो वो उनके दिमाग में का हती कि जो जो घर है हमारो और जो जो मोड़ी मोड़ा है ये सब हमारे आए और ये सब मतलब जो कछु है तो ये कहीं माया जानते हुए कि हम जो काम कर रहे हैं तो ये सब हमारे संगे जी और संग के हमारे भागी हैं, तभी तो वो मार काट काट करके गलत काम करके ले आते। तो
3: सही कह रहे
2: हैं। अब उनके दिमाग में काती भज्जा कि वो जानत नहीं है इनको परिणाम
3: का भुगतने
2: का भुगतने।
3: तो फिर एक बार फिर का भाव कि जब फिर उन्हें फिर छोड़ दो वो सब काम न मार काट करी न कछू करी
2: नहीं। तो उसे ऐसे का भाव कि जब भी पूछ भी आए,
3: हाँ
2: भी पूछ भी आए कि काय भज्जा जो हम हाय हत्या जो मार रहे हो जो काट रहे

0: हमें जो पाप मिलने या जो हमें कीड़ा पड़े या जो हमें
1: सजा मिले
0: तो देखो सब जने खा रहे,
1: आप सबको भोगने
0: आए भैया। अपन कभी सब्जी भाजी लिया तो घर में सब जने खाते नहीं,
1: बिल्कुल
0: खा। अपन काम धंधो करके ले आए तो सब जने खाते नहीं,
1: सही कह।
0: लेकिन उन सदन कसाई को भी क्या वो सही है तो
1: हाँ।
0: कि हम ले आ रहे तो जा बताओ
1: कि तुम और इनके भागीदारी हो,
0: इनके मतलब जो हमें लाभ मिले या जो हानि मिले या जो कछु मिले तो क्या तुम इनकी भागीदारी हो कि नहीं। तो देखो भैया का जवाब मिलो सब जनन ने, भैया
1: सब जनन ने यही कह रहे कि हम नहीं है भागीदारी।
0: तो उन्हें जब सब जन ने हाथ खड़े कह रहे कि भैया काम तो तुम कर रहे, तुम भोगो
1: हाँ
0: है?
1: जब फिर उन्हें कही के अब हम आस में बंद करत और बंद करके भी एक तला के किनारे एक बरिया के पेड़ के तरफ बैठ गए, बैठ गए सो उते कहा है के एक में तलज्जा में पानी भरो तो
0: हाँ।
1: सो एक आदमी लगाया तो ते का ढेकड़ी पानी पी वे खोते उतनी डोंकियां, सो वो डोंकियां के चक्कर में ढेकड़ी लगाए तो ते और तलज्जा में ढूर जाते पानी पी वे ढोर इतने पानी पी बे आए तो भी डोंकियां उड़ी जाती हमारी बार ढेंकड़ी जाएगी सुबह छटक
0: जाने
1: को पानी ना पियन दे वो।
0: अच्छा वो जो घेरे हैं तो वो पानी
1: हाँ।
0: जो पानी घेरे हैं तो वो बिल्कुल नहीं पियन दे वो
1: ढेर लाख भगा दे।
0: अरे भैया
1: अब जब सदन कसाई ने देखो तो उसके मन में आई के इतने पाप करे तो एक और सही।
0: अच्छा हमने की सौ सौ भी है तो एक भी
1: हो सही तो भैया का भाव के उनने जैसे भी ढोल भगाए से इनने भगा भी बाय में दस उगे हो कह दो सब डुआ ने कह पानी दम से पियो। अब जब उनने पानी पियो सो दही असी।
0: अब देखो भैया कभों कभों का हो के दूसरे के परोपकार कर भी से तो भैया जो तो अपन जानते ही हैं और सभी जने जानत के खुद को
1: जब उन पशुओं को पुण्य मिलो
0: आशीष दई
1: हाँ आशीष जब मिलो
0: हर सांस ले के
1: हाँ जब सदन कसाई के सबरे पाप कट गए।
0: लेकिन भैया फिर
1: ऐसे कबीरदास जी ने कही कि कहत कबीर सुनो भाई साधु
0: तरी गए सदन कसाई और हरी जपा कर भाई जी
1: हाँ।
0: रह गए ये भैया हरी को जपो जिसे अपन का आगे की रास्ता खुले और या भी कही के सुगा पड़ावन गण का तर गई तरी गई मीरा बाई
1: हाँ।
0: देखो भैया जे काम जब तक अपन अपनों का तब ना करें तब तक अपन का
1: बिल्कुल
0: ऊ चीज को लाभ ना,
1: ना मिले
0: तो ऐसा ही है
1: सही।
0: आखिरी पे तो हम देखो कबीरदास जी का कहे के भैया एक काम करो फिर वे उनने ये कहीं मन में अपनाओ
1: हाँ।
0: सदन कसाई जब उतरे से आए उनने कही जब भैया हम भैया को उन्हीं के दे संग न को दे तो अब तो भजो रे भैया
1: हाँ।
0: अब उनके विवाद में ये कही आ गई कि अब तो राम नाम भजो भजो रे भैया राम नाम गोविंद
1: हरि आहा।
0: जब आदमी धक्का खा जा
1: हाँ।
0: जब आदमी चोट खा जा
1: हाँ।
0: और तब आदमी की का कहना है कि समझ में आओ
1: हाँ कि समझ में आ गई
0: हाँ। जब सदन कसाई का ये बातें अपने घर ही से शिक्षा मिल गई उन्हें
1: सही
0: जिन्हें भी मार मार के काट काट के वो ले जाते और उन्हें खवाऊ थे तब उन्हें भंजन ने का कह दे कि भैया तुम कर रहे सो तुम्हें जानो
1: हाँ तुम्हें भुगतो।
0: तो जब उनकी देखो समझ में आ गई तो वे का फिर कबीरदास जी ने लिखो ऐसे लोगों की लाने के भज रे भैया राम गोविंदा हरि भज रे भजोरे भैया
1: हाँ
0: भजोरे भैया राम गोविंद हरि को
1: सही कह रहे
0: जब तप सघन कछु नहीं लागत और खर्चन नहीं गठरी। देखो का कह रहे ना तो भैया ही में हमें कछु साधन चाहने ना हमें कोनो
1: खर्चा
0: चाहने और ना हमें ऐसी
1: गठर पे सही कह रहे बहुत अच्छी बात लिख रहे कभी
0: के कितनी बढ़िया बात लिख रहे कि गठज्जा को मतलब के जब आदमी ज्यादा गठज्जा बांध ले चाहे कोनो काम की हो
1: सही कह रहे
0: तो वो कहो के गठज्जा तो बहुत बढ़ जाए
1: अच्छा उसको वजन धरे फिरने
0: और भैया

0: अनाई काव्य लिख रहे कवि जी। हाँ। सतन सबत सुख करण जासो भूल परो, संतन सभ्यन सुख के करण जासे भूल परो।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं।
0: हाँ।
1: कि संतन सम्यक, संतन सम्यक सुख के कारण, संतन सम्यक सुख के कारण जासो भूल परी, ओ कहत कबीर राम ने जासुख, कहत कबीर राम ने जामुख, तामुख धूल भरी।
0: धूल भरी ताम जोन भी मुखते।
1: हाँ।
0: जोन कैसे मुखते ओ कैसे कैसे, लेकिन उको भैया पल ओ कर्तव्य उस समय की कीमत है।
1: बिल्कुल।
0: जैसो तुम करो और एक दिन ऐसा होने के जो मुख धूल में। हाँ। मिल जाने।
1: सही कह रहे,
0: मिल जाने के नहीं मिल जाने। अब देखो अब कितने अब कछु तुम सो कछु नहा लो।
1: सही कह रहे,
0: ऐसे ही नहा लो या कछु लगा लो।
1: सही कह रहे,
0: लेकिन अपने ऊपर चादर तो चढ़ गई है जो अपनी काया है। या
1: सही कह,
0: अपन मल मल के कछु धो लो।
1: हाँ।
0: या कछु काम कर लो।
1: बिल्कुल।
0: जोन अपनी यह चादर है, जोन अपनी यह खाल है, जा तो पुरानी।
1: हाँ, कबीरदास जी बहुत अच्छी लिख रहा है बात को कि चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। अजब जुलाहे चादर बीनी, अजब जुलाहे चादर बीनी, सूत कर्म की तानी।
0: देखो भैया एक एक शब्द की का कह रहे कि चादर हो गई बहुत पुरानी। अरे सोच लो, मतलब जब चादर है जोन जब बहुत पुरानी हो गई, सोच लो और समझ लो।
1: सही कह रहे,
0: इतने कह रहा हूँ मन घमंड में रहो।
1: हाँ हाँ,
0: कविता में उनने कितनी अच्छी हो गई, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ ओ भगवान।
1: सही है,
0: ये जो मन है जो भाव अपनी भावनाएं हैं, जा इनके दिमाग और अंदर तो सोचो।
1: सही कह रहा,
0: जा अंदर तो सोचो कि अजब जुलाए चादर भी नहीं।
1: हाँ।
0: अरे खो गई तुमने आओ में ताओ में, और जैसा कछु बनो तो तुमने उस चादर का अपने हासिल कर ले, कर ले के नहीं, लेकिन सूत कर्म की तानी। जैसे उनने तकली जब सूत काटत है तो काट काट में बिलाक हो जाए।
1: हाँ।
0: एक एक सूत सूत कर करके, जैसे अपन ने कहा बूंद बूंद से
1: घड़ा भरा। सही कह रहा, इसे और आगे लिख रहे, सुरती नृत्य, सुरती नृत्य को भरना दीना, तब सबके मन माही।
0: देखो। हाँ। जब सुरत है अपनी, जब जिज्ञासा है।
1: हाँ, तो बिल्कुल
0: मन है।
1: सही कह रहे,
0: अरे इमें तो भरो कछु।
1: सही कह रहे,
0: ऐसी भरो के जो सबके मन को भावे।
1: हाँ।
0: जो सबके मनमानी, ऐसा तो नहीं के तब सबके मनमानी। अरे ऐसो काम करें कि सबके मन में वो मनमानी ऐसो तो ना करो, तुम स्वयं अपनी इच्छा का और स्वयं अपनो भंडार कर रहे, जो कछु कर रहे, जो हमन्य कर रहे।
1: हाँ,
0: जो तुम, अरे जो सबे अच्छो लगे वो काम खा।
1: सही, अच्छे करो,
0: दे रहे उपदेश, दे रहे कि वो काम खा अपन करने हैं।
1: और का लिख रहे आगे कि मेले दाग पड़े पापन के।
0: काहे भैया जे बात है, मेले दाग पड़े पापन के।
1: हाँ।
0: विसरन में लिपटानो।
1: हाँ, विसरन में लिपटानो।
0: अरे जो जो, जो कर्तव्य हो गए जो कल है।
1: हाँ।
0: तो दाग लगाई गए।
1: बिल्कुल।
0: और तुम जो काम कर आए तो उसमें तो तुम लिपटे ही हो। जाना जानो कि हमने बढ़िया काम करके या खा के तुमने वो मुंह पोंछ लाओ तो हम हमारे भीतरे का छूने।
1: हाँ।
0: लेकिन जो कर्तव्य जो कर्म में तुमने कल लाओ तो उमे तो तुम लिपट ही गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आगे का लिख रहे कि ज्ञान का साबन लाए ना धोया, ज्ञान को साबन लाए ना धोया, संत संगति के पानी। हाँ। और भाई भई खराब अब गई सारी, भई खराब
0: अब गई सारी। देखो भई खराब अब गई सारी, और लाभ मोह में सानी। अरे बीच क्या कह रहे, क्या बातों अगर जो तुमने सोच ली तो वो जो समय अकड़ गया तो खराब हो गई भाई।
1: हाँ,
0: खराब।
1: हाँ।
0: तो अब जो काम कर लो तुमने वो तो तुम सनई गए।
1: हाँ, लोभ मोह में सानी,
0: जो जो लोभ मोह में तुम सन गए, जो जो चीज तुम्हारे दिमाग में वो हाँ। तो तुम सने गए, अब कछु नहीं हो।
1: और ऐसे ही उड़त उम्र गमाई
0: भैया, जैसो तुम करो।
1: हाँ,
0: जैसो जैसो तो उमर तो कड़ाई रही।
1: बिल्कुल,
0: तुम्हारे ऊपर वो कहता बेचारा।
1: बिल्कुल, ऐसे ही औरत उम्र गमाई, भली बुरी नहीं जानी, और शंका मानी जानी जिए अपने, शंका मन जानी जीने अपने, ये वस्तु बिरानी, जीने जा जान ले के जा वस्तु बहुत बिरानी है, जा अपनी नैया अपन तो जेतना है सो है, अपनी नैया जाका है। ठीक, तो कबीरदास जी बहुत अच्छी बात लिख रहे हो कि कहे कबीर यूं ही राख जतन से, कहे कबीर यूं राख जतन से, नहीं फिर हाथ ना आनी, अगर जो जीवन निकर गओ फिर हाथ आवे बाओ नैया।
0: देखो भैया काहे जी आज की कवतन में,
1: हाँ बिल्कुल,
0: और आज के इस ज्ञान में कबीरदास जी ने मार्गदर्शन बहुत अच्छो दे रहा
1: है। सही बात है
0: कि ना तो भैया अपन खा जा उम्र है जो खराब करने, और ना जो मोह है जो लोभ है, ना ही में अपन खा सीधी सीधी बात है ज्यादा पन्ने है।
1: बिल्कुल
0: है, और ऐसो काम नहीं करने कि जो अपनी उम्र में और अपनी जो शरीर है जो कर्तव्य है ई पे अपन खा लग जावे, और नाम इसे या ला जावे या अपने ऊपर नाम कम जाएगा तो फलानो भैया कैसो आते।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे। तो देखो काशीराम भैया, अभी के संगे हम आपको जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से अपनो जावे को अब समय सो हो रहा है।
0: बिल्कुल भैया,
1: सो अपने साथियों से जो सुनवे वाला साथी है उनसे कहो चाहे कि ई कार्यक्रम में अगर जिते बात कम्बल भई होवे या फिर सदन कसाई की बात कछु और होवे, और आप वो बात को जानत है कि सदन कसाई की जा कथा ई प्रकार से है, तो आप हमें जरूर बताएं। काय के अपन को उतेक अनुभव नैया सदन कसाई की कथा को, सो जो अपने सुनवे बाय साथी है वे जरूर अपन को बतावे।
0: भैया ई में जा बात नैया देखो गे गेरी गे उठली है।
1: हाँ,
0: अपनो काम है भैया, लो जितेक लो अपन जानत है।
1: हाँ,
0: उतेक लो अपन ने संदेश दे दो, और जो कार्यक्रम तो यही के लाने हैं कि भैया अपन कहा बताए।
1: बिल्कुल,
0: और उन भैया को अपन बातन में शामिल करें।
1: हाँ, हाँ,
0: और उनकी जो कविताएं हैं, जो उनके कहानियां हैं या जो किस्सा है वो अपन का भेज।
1: बिल्कुल,
0: तो भैया अपनो पतो और फोन नंबर बता दो।
1: जी हाँ काशीराम जी, भैया अपनो देखो पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा, और अपनो फोन नंबर है 94-25-14-17-26। अब एक संगे अपने दोस्त माता दीन को
0: और भैया काशीराम को दो आज्ञा,
1: नमस्कार।
2: एपिसोड नंबर 11, सफाई कर्मचारी। इस एपिसोड का उद्देश्य है लोग सफाई कर्मचारियों का काम, उनकी जिम्मेदारियां, मुश्किलों और परेशानियों को ठीक से समझें। सफाई कर्मचारियों को फायदेमंद योजनाओं की जानकारी दी जाए, साथ ही ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे उन्हें इज्जत और मान सम्मान मिले। इस कार्यक्रम के मुख्य संदेश है सफाई कर्मचारियों का काम और उनकी समस्याएं, सरकारी योजना और कानूनी सुरक्षा, पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग, पहले और बाद में पूछे गए कुछ सवाल। सवाल नंबर 1, क्या सफाई कर्मचारियों को काम करते समय सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क दस्ताने पहनने चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर 2, क्या गांव के सभी सफाई कर्मचारियों की पहचान और पंजीकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए, हाँ या नहीं? क्या ग्राम पंचायत को सफाई कर्मचारियों की सेहत की जांच समय समय पर करानी चाहिए, हाँ या नहीं? श्रोताओं, ये 3 सवाल हैं, इसके जवाब आपको इसी कार्यक्रम में मिलेंगे, इसीलिए कार्यक्रम ध्यान से सुनिएगा। विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों के लिए इन योजनाओं पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY योजना के तहत प्रत्येक परिवार को इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा मिलता है।

ये इलाज बड़े अस्पतालों में भी कराया जा सकता है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये योजना सफाई कर्मचारियों और अन्य लोगों के जीवन बीमा का फायदा देती है। अगर किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 2 लाख की सहायता राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये तीसरी योजना है। इस योजना में ऐसे मामलों में मदद की जाती है जब किसी सफाई कर्मचारी की गंभीर दुर्घटना हो जाती है। अगर दुर्घटना में मौत या पूरी तरह से अपंगता हो जाती है तो 2 लाख की सहायता राशि मिलती है। अगर कुछ हद तक अपंगता होती है तो 1 लाख तक की मदद दी जाती है। स्वच्छता योद्धा, स्वच्छता के गुमनाम नायक।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी। मैं हूं आपकी आरजे वर्षा और मेरे साथ है मेरे आरजे आरजे
1: माता दीन।
0: कभी भी सड़क पर कचरा नहीं फेंकते हैं, दूसरों को भी साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए कहते हैं।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे माता दीन। आज हम एक खास एपिसोड लेकर आए हैं। इसमें हम उन लोगों की बातें करेंगे जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनकी तारीफ कम होती है।
0: बिल्कुल सही कहा माता दीन, वे ना तो सूट पहनते हैं और ना ही बड़े दफ्तरों में बैठते हैं, लेकिन उनके बिना साफ भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। ना साफ सड़कें, ना ठीक से चलने वाले शौचालय और ना ही रोज की सफाई होगी।
1: आज का एपिसोड उन सफाई कर्मचारियों के बारे में है जो स्वच्छता के असली हीरो हैं। वे गलियां साफ करते हैं, सेप्टिक टैंक खाली करते हैं, नालियां साफ करते हैं और कई बार बहुत मुश्किल हालात में भी लगातार काम करते रहते हैं ताकि साफ, सुरक्षित और रहने लायक माहौल बना रहे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि नाली, स्कूल परिसर या सार्वजनिक शौचालय किसने साफ किया? ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते।
1: हाँ, उनका काम दिखता तो है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पर आज ऐसा नहीं होगा। आज हम उनके काम के साथ साथ उनकी जिंदगी और परेशानियों की बात भी करेंगे। ये भी बताएंगे कि वे भी सुरक्षा, मदद और सम्मान के हकदार हैं।
0: वे ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं, जैसे गंदे टैंक साफ करना, जाम नालियों को खोलना, भारी मशीनें चलाना और कचरा साफ करना। इन कार्यों की वजह से उन्हें हैजा, टाइफाइड, पीलिया और सांस की बीमारियों का खतरा बना रहता है।
1: एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 50 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी काम करते हैं। उनमें से करीब 20 लाख लोग ऐसे काम करते हैं जो बहुत जोखिम भरे होते हैं। सोचिए, अगर ये बिना मास्क, दस्ताने या सुरक्षा उपकरणों के काम करते हैं तो उन्हें कितनी परेशानी होती होगी।
0: ये काम बहुत खतरनाक होता है। दुख की बात ये है कि ये लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सफाई कर्मचारी कई बार कम वेतन में नौकरी की गारंटी के बिना मुश्किल हालात में काम करते हैं।
1: लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकार ने खासकर स्वच्छ भारत मिशन के जरिए सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कई अच्छे कदम उठाए हैं। कुछ खास योजनाएं हैं जिसका उद्देश्य उन्हें सुरक्षित और सम्मानित बनाना है।
0: दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय यत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र अभियान यानी नमस्ते योजना के बारे में बात करेंगे। ये योजना दो मंत्रालयों, सामाजिक न्याय मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की साझी पहल है।
1: इसका मकसद सूखी शौचालयों, खुली नालियों या सेप्टिक टैंकों से मानव मल को बिना मास्क या दस्ताने के हाथ से साफ करने की खतरनाक प्रथा को समाप्त करना है।
0: नमस्ते योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को वैक्यूम मशीन चलाना सिखाया जाता है और उन्हें मास्क, दस्ताने, जूते और सुरक्षा साधन जैसे जरूरी सामान इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उन्हें इलाज के लिए बीमा और कानूनी सुरक्षा भी मिलती है।
1: क्या आप जानते हैं कि अगर किसी को बिना सुरक्षा के शिविर साफ करने को मजबूर किया जाए तो ये भारतीय कानून के हिसाब से गलत माना जाता है?
0: हाँ, मुझे पता है। सफाई कर्मचारी को बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर में भेजना गलत है। ऐसा करना कानून के खिलाफ है।
1: सही कहा, लेकिन कई जगहों पर नियम का पालन नहीं होता है। सफाई कर्मचारी को बस एक बाल्टी देकर गंदे माहौल में उतरने को मजबूर किया जाता है, जिससे उन्हें हैजा, पीलिया और सांस की बीमारी जैसी समस्याओं का खतरा रहता है। साथ ही चोट लगने और जहरीली चीजों से नुकसान का डर भी रहता है।
0: मुझे लगता है कि उचित कदम उठाने का समय आ गया है। कानून का पालन करें और साफ सफाई का काम करने वालों को सम्मान दें।
1: और यही पंचायतों की भूमिका शुरू होती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पंचायत की जिम्मेदारी है कि सफाई कर्मचारी सुरक्षित रहें, उन्हें अच्छा वेतन मिले, उन्हें काम की ट्रेनिंग दी जाए और उनके साथ इज्जत से पेश आया जाए।
0: पंचायत सफाई कर्मचारियों की सूचना एक जगह जमा कर सकती है, उन्हें फोटो वाले पहचान पत्र दे सकती है और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ सकती है, जैसे इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना।
1: चलिए अब इन योजनाओं की और जानकारी देते हैं।
0: बिल्कुल, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या PMJAY एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत हर योग्य परिवार

0: अस्पताल में इलाज के लिए साल भर में 5 लाख तक की मदद मिल सकती है। इसके लिए सफाई कर्मचारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या ग्राम पंचायत ऑफिस जा सकते हैं। उन्हें सिर्फ आधार कार्ड और राशन कार्ड ले जाना होता है। पंचायत उन्हें ई हॉस्पिटल आईडी बनवाने और क्लेम की प्रक्रिया समझाने में मदद भी करती है। इस तरह अगर परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ती है।
1: और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण यानी PMAY जी की ये योजनाएं लोगों को पक्के घर बनवाने में मदद करती हैं। इसके तहत उन्हें जरूरी सुविधाएं वाले घर बनाने के लिए पैसे मिल सकते हैं। प्रक्रिया आसान है, वे अपने ग्राम पंचायत के ऑफिस जाएं, वहां उनके आधार कार्ड और जमीन के कागज देखे जाएंगे, फिर पंचायत उनका आवेदन करेगी। अगर मंजूरी मिल जाती है तो उन्हें घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं।
0: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY एक ऐसी जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मौत होने पर 2 लाख का कवर देती है। ये योजना 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए कम सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध है। सालाना प्रीमियम ₹436 प्रति व्यक्ति है।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY एक दुर्घटना बीमा योजना है जो 18 से 70 साल की उम्र के लोगों के लिए अचानक मौत या अपंगता के लिए 2 लाख रुपए तक का कवर देती है। ये योजना प्रति व्यक्ति ₹20 प्रति वर्ष के सस्ते सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध है।
0: देखिए, सफाई कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं हैं जिसका भी फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कई बार लोगों को आवेदन करने का तरीका पता नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि इस बारे में लोगों को बताया जाए। अगर आप सफाई के काम में लगे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं तो उन्हें जरूर अपनी पंचायत से बात करने और इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए कहें। इससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है।
1: हाँ, ये उनके लिए बहुत काम की बात होगी। पंचायत को समय समय पर ऐसे कैंप भी लगाने चाहिए जहाँ सफाई कर्मचारियों को लाभ देने वाली योजनाओं के बारे में बताया जाए।
0: ये बहुत काम की बात होगी। ये भी ना भूले कि हर कर्मचारी को काम की जगह पर PPI किट, साफ शौचालय, पीने का पानी और फर्स्ट एड की सुरक्षा मिलनी चाहिए।
1: एक और जरूरी बात है, सफाई कर्मचारियों के लिए सेहत से जुड़े कैंप का आयोजन होना चाहिए। वे अक्सर खतरनाक चीजें जैसे संपर्क में आते हैं। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जरूरी है कि पंचायती राज संस्थाएं समय समय पर उनकी डॉक्टर से जांच कराएं, समय समय पर टीके लगवाएं और लगातार मदद देते रहें।
0: प्रशिक्षण भी उतना ही जरूरी है। सफाई कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा औजारों के इस्तेमाल, मशीन चलाने और डिजिटल साक्षरता का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने फायदे ऑनलाइन देख सकें।
1: ये सब तो समझ में आती है, लेकिन एक और बात है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ।
0: बताओ क्या बात है?
1: मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम सफाई कर्मचारियों के नाम जानते हैं, उनके परिवार के बारे में कुछ जानते हैं, और क्या हम उनके लोगों को धन्यवाद कहते हैं जो हमारी गलियां, नालियां, शौचालय और सड़कें रोज साफ करते हैं।
0: शायद ही कभी, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए। हमें ये तय करना चाहिए कि सफाई दिवस पर ग्राम सभा की बैठकों में, स्कूल के कार्यक्रमों में सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया जाए, उनके काम के लिए उन्हें इज्जत, मान सम्मान और पहचान मिले।
1: हाँ, ये एक बहुत बढ़िया सोच है। महीने का सबसे अच्छा सफाई कर्मचारी जैसा बेज भी किसी को गर्व महसूस करा सकता है।
0: ये कोई दान नहीं बल्कि इज्जत है। ये तो बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। हमें अपने सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान भरा काम करने का माहौल बनाना होगा। जैसे बाकी काम होते हैं, वैसे ही सफाई भी एक काम है।
1: तो श्रोताओं, आज के इस एपिसोड में हम हर सफाई कर्मचारी, चाहे वो अब काम कर रहे हों या पहले करते थे, को सलाम करते हैं, उन्होंने चुपचाप मेहनत की है, गलियां साफ की हैं, नालियां खोली हैं, हमारी जिंदगी को साफ और सेहतमंद बनाया है। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि अगर आपको कोई सफाई कर्मचारी दिखे तो उन्हें धन्यवाद जरूर दें, उन्हें पानी चाय या कुछ खाना दें, और सबसे जरूरी बात है उन्हें सम्मान दें, उनका काम इज्जत के काबिल है।
0: सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों, याद रखिए कि सुरक्षा के लिए पहने जाने वाले पीपीआई किट पहनना भले ही थोड़ा असहज लगे, लेकिन ये आपकी जान बचाता है। दस्ताने, जूते और मास्क आपको खतरनाक बीमारियां और जहरीली गैसों से बचाते हैं। हर बार जब आप इन सुरक्षात्मक चीजों को पहचानना भूल जाते हैं तो आप सिर्फ अपनी नहीं अपने परिवार की सेहत को भी खतरे में डालते हैं। आपके कपड़ों पर लगे कीटाणु आपके बच्चों और जीवन साथी को भी बीमार कर सकते हैं। और हाँ, एक तय समय के बाद पीपीआई किट बदलना बहुत जरूरी होता है, इसे साफ रखना भी उतना ही आवश्यक है।
1: प्यारे श्रोताओं, सुरक्षित रहिए, साफ रहिए, ये कभी मत भूलिए कि जो हमारे लिए सफाई करते हैं वो भी पूरे गर्व के साथ जीने के हकदार हैं।
2: आइए स्वच्छ भारत का निर्माण सिर्फ साफ सड़कों से नहीं बल्कि साफ दिलों से भी करें।
0: संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम एपिसोड 11 यही समाप्त होता है। श्रोताओं, यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा है हमें जरूर जरूर जरूर बताइएगा हमारे नंबर पे कॉल करके। हमारा नंबर है 9219207749। श्रोताओं, जो सवाल हमने कार्यक्रम शुरू होने से पहले पूछे थे आपसे, एक बार फिर से उन कार्यक्रमों को यानी उन सवालों को हम दोहरा देते हैं। तो सवाल नंबर एक है, क्या सफाई कर्मचारियों को काम करते समय सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने पहनने चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर दूसरा, क्या गांव के सभी सफाई कर्मचारियों की पहचान और पंजीकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर तीसरा और आखिरी, क्या ग्राम पंचायत को सफाई कर्मचारियों की सेहत की जांच समय समय पर करानी चाहिए, हाँ या नहीं? इन तीनों सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे अगर आपने यह कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जल्दी से फोन उठाइए और हमें व्हाट्सएप करिए इन तीनों सवालों के जवाब हाँ या नहीं में। आज के इस कार्यक्रम से जाने का होता है हमारा समय और हम चलते हैं, फिर जल्दी ही आप सभी से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बीमारियों से दूर रहिए।
2: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में हम अपने सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करेंगे और नमस्कार सब साथियों को
1: हमारे भी नमस्कार।
0: अरे मनीष भैया तनक बोलन तो देऊ करे कम से कम हमें आप बीच बीच में टोक देते मतलब काया तुम बात कर रहे अपने साथियों
1: नहीं, नहीं हमारे भी नमस्कार पहुंच जावे सभी श्रोता साथियों को ऐसे हम वो कामयाब कार्यक्रम जो रथ है वो
0: हाँ, वो तुम्हारा है
1: नहीं
0: हमारी कह दू
1: नहीं हमारे युवा साथी ये सोचते हैंगे के मनीष भैया या कार्यक्रम को लेके आते हैंगे
0: और हमें जो है नहीं हाँ। नहीं जो ही मतलब है कि तुम हमें जो क्या पहुंचा रहे हैं कि जो कार्यक्रम तो हमारा है हम ही अपने साथी इनके बीच में लेके आऊ थे तो आज जी कैसे पहले भूल गई ई बात को तुम्हें बुरा लगा हुज्जे से तुम बीच में हमारी बात काटने लगे
1: नहीं ऐसा नहीं है बात और हम अपने साथियों को बड़ी खुशी होती जब हमारे साथी हमसे जुड़ के पूछते हैंगे के भाई साहब ये कार्यक्रम सुन के हमने अपने जीवन में बदलाव करो है को कैसे कई वर्ष हो गए हैं 2008 से जब हम लोग चला रहे कार्यक्रम को और 2008 के बाद हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करी है थी वह रूपरेखा हमारे श्रोता साथी ने जो अपने सुझाव दिए थे उन्हीं सुझाव के आधार पर हमने जो रूपरेखा तैयार करी थी। अब जैसे हम होंगे कामयाब कार्यक्रम हम तो हुए ही कामयाब लेकिन हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे चाहे वो व्यवसाय हो
0: अरे बस मनीष भैया बस बहुत ज्ञान देते आप इतनो ज्ञान जब बोला थेंगे तो ऐसा लगत के कितु बैठ के और बढ़िया ज्ञान को भंडार भरो हुए और वो लेट हुए अब तना बता तो दो कौन सो कार्यक्रम लेके आए हैं।
1: जो कार्यक्रम को नाम है मित्रों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम और जहाँ मैं अपन सुना थे छोटो काम बड़ा मुनाफा
0: ये यानी के भी को मतलब है कि छोटो काम करो और मुनाफा बड़ो कमाओ
1: हाँ और जब कार्यक्रम में हम जैसे हम कामयाब कार्यक्रम रखेंगे तो उन कार्यक्रम में हम अपने साथियों को चाहे वो जैसे अपन नौकरी करवे जा रहे हैंगे
0: हाँ।
1: तो नौकरी के लाने कैसे इंटरव्यू दें हमारे साथी बाकी लाने भी उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होते है व्यक्तित्व विकास जो रहते है यदि आपके पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है आप जैसे इंटरव्यू देवे जा रहा है तो आप हिचकिचाते होगे कैसे बहुत ज्यादा समय लगता है जी चीज इनको सीखने में यदि आप किसी के पास बैठे हो उनका सवाल का है उसका जवाब कौन तरीके से देना है वो तो नौकरियों में जी चीजें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखो चाहिए तभी हमारा व्यक्तित्व निखरे है वो और तभी हम आगे बढ़ सके तभी हमने जो कार्यक्रम को नाम रखो तो हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: लेकिन जो तो बताओ अबे अपन का सुन रहे हैंगे और आप बता की के बारे में रहे
1: नहीं हम कामयाब कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं
0: हमारे फोन बता दो
1: चलो अपनी बहन को एक फोन आ रहा है जी बेकार सलाह दे रही है इसको सुना थे कैसे हमारे जी बहुत अच्छे साथी हैंगे एक चीज हम एक बारे में बताबो चाहते हैं
0: फोन तो उठा लो पहला वो
1: नहीं हम बिल्कुल उठाए ले रहे फोन हम अपने साथी को बताबो चाहते हैं के व्यवसाय करवो और व्यवसाय के बारे में समझवो ये बहुत बड़ी चीज रहती है जैसे अपन किसी बड़े व्यवसायी के बारे में या सफल व्यवसायी के बारे में बात करते हैं तो वास्तव में जो सीख मिलत है उनके जो अनुभव रहते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहेगी।
0: अब फोन कटेगा आप काय में से उठा रहे
1: चलो हमारे संग टीकमगढ़ से रूपा जी जुड़ रही है चलो उनसे

0: बतकाव बंद कर लेते हैं तो उनके अनुभव को साझा कराते हैं।
1: तो बात तो हम ही करें, आप को ना करें।
0: चलो आप ही कर लो, जयविता जी को फोन है वो, आप ही बात करें।
1: हाँ ठीक है। हेलो नमस्ते।
2: नमस्ते, रूपा रानीपुरा से, जिला टीकमगढ़ से। अभी वर्तमान में हम गांव में सिलाई सेंटर टीकमगढ़ से आया है। टीचर अभी सिलाई सेंटर का काम चल रहा है, इसमें कपड़ा भी आए हुए है, तो कपड़ा की सिलाई चल रही है, सिलाई सीखेंगे अब।
1: अच्छा, यानी कि आप सिलाई का काम कर रही हैं। तो सिलाई का काम आपने कहाँ से सीखा है, कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या?
2: हाँ, जिला टीकमगढ़ में हमने केंद्रीय टीकमगढ़ प्रशिक्षण में सेंटर सिलाई खुला हुआ था, वहाँ पे हमने एक महीने सिलाई सेंटर सीखा। वहाँ से फिर हम गांव में आ गए, रानीपुरा गांव में, वहाँ से फिर सिलाई सेंटर खुला। तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलने लगे, फिर तो पैसे भी मिलने लगे
1: जी,
2: और यहाँ पे अपने रोजाना आते जाते हैं
1: जी। तो रूपा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सिलाई सीखी है, यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, कैसे आपने उसमें अप्लाई किया, कहीं से जानकारी आपको मिली तो वो कहाँ से मिली?
2: हाँ, वैसे गांव के थे आदमी जो, जिन्होंने सिलाई सेंटर खोला ना समूह से
1: जी,
2: उनसे हमने संपर्क किया। तो फिर उन्होंने बुलाया, उनके बारे में जो कुछ लगा, कागज वगैरह नाम सारा कुछ लगा के फिर बस यहाँ से हमने शुरू किया काम। तो टीकमगढ़ में हमने सिलाई सेंटर सीख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर एक महीना हमें टीकमगढ़ में सिलाई सेंटर सीखने का मौका मिला, फिर एक गाँव में आ गए, तो बस ऐसे आगे बढ़ रहे, हमें बहुत अच्छा लगा है
1: जी। तो आपने जब अप्लाई किया था, वहाँ पे कुछ फीस वगैरह आपकी ली गई थी क्या?
2: नहीं, फ्री में सीखा।
1: अच्छा, कोई पेमेंट नहीं हुआ था आपका, मतलब पैसे नहीं लगे थे?
2: नहीं।
1: अच्छा, तो रूपा जी, आप इससे पहले, सिलाई सीखने से पहले क्या करती थी?
2: कुछ नहीं, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में खेती किसानी करते रहते हो, गांव में कुछ नहीं है क्या, कुछ काम ही नहीं है, मजदूरी कहीं लगती नहीं है, बस बैठे ही खाली घर में।
1: अच्छा, तो आपको क्यों लगा ये कि हमें सिलाई सीखना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होगा?
2: हमने इसलिए सिलाई सीखना चाहिए ताकि हमें दो पैसे मिलने लगे, कहीं बाहर ना जाए, हम मजदूरी करने घर ही में रहे, बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल से पढ़े और गांव में रहे, घर में रहे, बस दो पैसे मिले, हमें दो पैसे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, घर से बाहर ना कहीं जाने पड़े।
1: बिल्कुल, जो आपकी सोच है बहुत अच्छी लगी, और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो आप काम कर रही हैं, इसमें आपको कितना क्या मुनाफा, जिसको कहते हैं, कैसे हो जाता है?
2: वैसे हो जाता है, दिन में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे फिलहाल हमने फीस सिले हुए है, दिन में एक दो बिलो सिले तो बन जाते हैं, 60-65 रुपए दिन के हो जाते हैं, तो महीने पे जोड़ लो कितने होते हैं बस।
1: अच्छा जी, तो दिन के 60-65 रुपए आपके हो जाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपके परिवार में चलाने के लिए कुछ जो खर्चे होते हैं, थोड़ा बहुत मदद तो आपको मिलती होगी इससे?
2: हाँ, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे।
1: अच्छा अच्छा, आगे बढ़ाएंगे जी।
2: हाँ,
1: बिल्कुल,
2: भोपाल से भी आए थे अधिकारी, लोग बता रहे थे कि अभी करो फिर पैसे बढ़ाएंगे।
1: अच्छा, तो अभी मतलब जितना काम आप करती हैं उसका ही पेमेंट मिलता है कि महीना में जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता है?
2: हाँ, ऐसे महीने में अभी मिला तो नहीं है, पर सुनवाई है अभी, तो ऐसे पुराने चीज थी ना, उन्हें सिलाए, जैसे पैंट थे, शर्ट थे, इन्हें अब नए कपड़े आए हुए हैं, हम बता रहे थान के थान आए हुए हैं, उनमें से बनाएंगे, जैसे टीकमगढ़ में आए हुए थे उनमें से कपड़ा सिलने के लिए, सीखने के लिए काट के दिए थे उन्होंने
1: जी। कैसे मतलब बाहर से जो कपड़े आते हैं वो सिंपल थान के कपड़े रहते हैं, फिर आप लोग उसको डिजाइन करते हो यहाँ पे? अच्छा, फिर इसकी जो मार्केट है, कहाँ पे आप लोग खुद सेलिंग करते हैं या फिर जो कपड़ा आपको देते हैं वही लोग लेके जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं आप?
2: इसमें वही लोग हमें देते हैं कपड़ा, तो हम उसे सिल के फिर उन्हीं के पास छोड़ देते हैं, ताकि बाहर से कपड़ा लाते हैं, झांसी से सुनवाई है, झांसी से कपड़ा लाए हैं।
1: अच्छा अच्छा, झांसी से कपड़ा आता है आपका और वो खुद ही आके आपके ले जाते हैं तैयार किए हुए?
2: हाँ,
1: कपड़े?
2: हाँ, तैयार किए हुए कपड़ा ले जाते हैं।
1: अच्छा रूपा जी, बहुत बढ़िया काम है ये आपका तो, और साथ ही साथ ये आप अकेले सिलाई करती हैं या फिर आपके साथ और भी कुछ महिलाएं या लड़कियां?
2: 10-12 महिलाएं हैं, साथ में मिलके सारी करती हैं।
1: अच्छा, सारे लोग करते हैं सिलाई का, तो एक समूह में आप लोग काम कर रही हैं अभी?
2: हाँ, समूह वाले भी हैं, कुछ बिना समूह वाले हैं, समूह में मिलके काम कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके।

0: जी, बहुत बढ़िया आपकी जो पहल है बहुत अच्छी लगी। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें, और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें?
1: आगे ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करें कुछ, ताकि गांव वालों को भी आए तो अपने 2 पैसे गांव के भी बचे और 2 पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
0: जी जी बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें हमें बताई हैं बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी, सिलाई का काम आपने शुरू किया, तो क्या क्या परेशानी आपको आई? क्योंकि देखो कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है।
1: परेशानी तो आती है वैसे भी
0: जी, तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
1: हमें ऐसे जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता, जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिलके, हमने सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती है,
0: जी
1: उनसे उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर का होता है। इसके बाद में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें।
0: जी जी
1: कल कल जाके हम बाजार में ले तो सके, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते,
1: नहीं ले सकते ना। फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना, ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए, या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब। तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे, हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई। हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछा हमने की ये चीज क्या है,
0: जी
1: तो हमें जानकारी हुई।
0: जी रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर इससे ज्यादा समय लगा?
1: नहीं नहीं, 1 महीने में नहीं हमने किया
0: जी,
1: अभी चल रही, शुरू चल रही, अभी सीख रहे हैं अभी। कितने फिलहाल हमने 1 महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए।
0: अच्छा, 3 महीने आपके गुजर गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आप परफेक्ट बना लेती हैं।
1: हाँ, वैसे सलवार है, कुर्ती है, ब्लाउज है,
0: ये चीजें आप बना लेती हैं?
1: हाँ, ये 2-3 चीजें बना लेते हैं।
0: अच्छा, इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है?
1: अब नहीं पड़ती, बस पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ती किसी की हेल्प।
0: अच्छा, तो गांव में जब आपने सिलाई सेंटर खोला है, मतलब खुला हुआ है, आपके गांव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा के लोग आए और आपके पास कपड़ा सिलवाएं, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
1: नहीं, अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है।
0: अच्छा,
1: तो अभी तो कोई नहीं आता, अब आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा, ना आएगा तो सब घर में घर होगा टेलर, घर घर अपना काम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं, ताकि हमें आगे बढ़े।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी, इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हूँ उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे, आपके मन में ये दिमाग में आइडिया आया कि हम सिलाई करेंगे, आपको पहले से इच्छा थी क्या?
1: हाँ, पहले से थी, हम पहले से सोच रहे थे, पहले से हमने मशीन भी रख ली थी, तो हमारे पास कपड़ा नहीं आता था तो हम अपने घर के पुराने कपड़े काट कूट के अपने सिलते रहते थे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बस दीदी एक बात और बता, कि हर गांव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे ना बढ़ पे? अगर घर ही में है ना इंसान, तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता, ये सबको भी आप बता दो। आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे होंगे
0: जी,
1: तो लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है, इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई और सब अच्छे जो है एक घर में सब सारे मिलके चले।
0: जी बिल्कुल, आपकी कहने का मतलब है कि महिलाएं, बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहती, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
1: नहीं, बस यही बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
0: जी, तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
1: हमें तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है, इसीलिए हम सोच रहे कि आगे चल के हम समझा रहे आगे हमें बढ़ाओ, ताकि हम 2 पैसे

0: पढ़ सके, हम कहीं कहाँ जाएं, बच्चे पढ़ाई में कहाँ जाए गाँव छोड़
1: के। जी जी बिल्कुल, गाँव छोड़ने की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी कि गाँव छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमें, अपने ही गाँव में अगर हमें कुछ काम ऐसा मिलता है जैसे कि आप सिलाई सेंटर करती है, ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आप अपने गाँव में रहकर ही कर सकती है, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का इसमें सहयोग कर सकती है,
0: सकते हैं। लेकिन परिवार आजकल साथ ही नहीं दे रहा, तो बताओ ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है तो सोच रही है आगे ना बढ़ जाए।
1: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारी साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, और वो कुछ करना चाहती हैं तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे, और अपनी आवाज हमें हम तक पहुंचाए, ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं,
0: कुछ भी कर सकती है, इसलिए सोच रहे हैं। लेकिन गलत सोच है बरसा बहन, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ना जाए आगे, ठीक ही नहीं रह जाए, सोच गलत है, आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
1: देखिए रूपा जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकती हैं, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जी रूपा जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
0: उनके लिए बस यही, कोशिश करते रहे, हार ना माने, बस आपने जो कहा बस हिम्मत बढ़ाते रहे, पीछे ना हटे, लड़का लड़की कहते हैं लड़का लड़की एक समान
1: जी
0: बराबर है, लेकिन हम भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, है।
1: जी बिल्कुल रूपा जी,
0: आगे बढ़ते रहे बहन भाई, सब मिलके चलते रहे, और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे, ठीक है?
1: जी बिल्कुल रूपा जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतनी दूर की होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दे, ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अच्छी बात, धन्यवाद,
1: नमस्कार।
2: कारवार साहब, तुम तो इतनी नौनी अच्छी बातें कर लेती हैं, और रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दें, आपको शायद हमें दिखा पहले से बिल्कुल पतो ये कि रूपा जी बात करें और व्यवसाय के बारे में बताएं।
1: तो
2: हम सोच ही रहते हम कमे आज कौन सा व्यवसाय दें, कौन सा व्यवसाय दें, और हमारी रूपा बहन ने बताई दी कि हमने जो हम अनुभव जो राय है उनके, कैसे हाँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कछु भी चीज को यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लाने ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ा थेगी, उसके नाने मार्केटिंग की जरूरत पड़ा थे, ये सारी बातें जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उनने कैसे कैसे एक एक सीढ़ी खो रख के आज आगे बढ़ गई हैंगी, और उनने किस तरीके से सिलाई को काम सीख के आज भी अपनों परिवार को भरण पोषण कर रही, वाह धन्यवाद।
1: अरे मनीष भज्जा, सबसे बड़ी बात पता का हैगी, जा हैगी कि अपन और सीख तो ले थेगे, मतलब जैसे कहता हूँ सुनी कि अरे वो ते जो चीज से करे हमें तो सीख भी जाना, सीख भी सुबह बहुत है ना, नई शुरुआत में तना एक जाबे को चस्का लगो रहा थे, चले तो जा सीख भी, लेकिन वो काम को कैसे हम अपनो व्यवसाय बना सकते, कैसे उसे अपनी आजीविका चला सकते, जो बहुत कम लोग होते जो सीख पाएंगे। तो काहे कि रूपा जी ने जो हमें बताई थी कि टीकमगढ़ में जो आरसीटी सेंटर चला थे वो उनके माध्यम से कम होते ज्यादा नहीं तो 30-40 औरतें उस समय पे ट्रेनिंग उनके संगे ले रही थी, लेकिन अगर बात करें कि उखो कंटिन्यू आगे कीने करो तो उनमें से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घर जब वापस गई और भी सिलाई को काम कर लगी हैंगी। तो कैबी को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करवे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उखो जरूर सीखो, क्योंकि आपने वो एक महीना या चार दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है और वो समय आपको बहुत कीमती हतो, महत्वपूर्ण हतो। तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते हैंगे, वो सोचवे के संगे अपन कैसे एक छोटे सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हेंगे। इतने अगर अपन बात करें मनीष भैया के अपनी जो बहने होती खास तौर से भी दो चीजन को ज्यादा पसंद करती हैं, ये दो या तीन चीजन को बहुत से बहुत, एक तो हो जाते हैं वो कि सिलाई को काम, दूसरो ब्यूटी पार्लर, तीसरो उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छा लगा थे तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो चीजन पे या तीन चीजन पे काया अटकती,

0: अच्छे तरीका से बना वो आते हैं तो केवल दो ही चीजन पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे, आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
1: अरे ज्ञान की देवी, अब हाँ? तो नक रुक जाओ और हमारे साथियों हो तनक सांस लेन दो और जो लोग गीत सुनन दो नखो, कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान दे चली जाओगी तो हमारे साथी कह के हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हेंगे।
0: हाँ, मतलब तुम तो मैं बोलन दो सो कछु नहीं है,
1: अपन एक बढ़िया अपन भी थोड़ा विराम ले लेते हैं और अपन सुनवाते हैं अपने श्रोता साथियों को जो नौ नौ सो गजल खो, अपन गजल खो सुनेंगे और गजल के बाद साथी रहो फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात जा कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: तो हमारे सब श्रोता साथी अब हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल को सुन रहे थे और अब हमें लगा थे वो मनीष भैया जो ज्ञान तत्व में दे सकते हो गए कहेगा हम बोले सो फिर कहते कि ज्ञान दे रही
1: नहीं, अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे, साथी अनखो बस पूछ वो चाह रहेंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहेंगे तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहेंगे, कैसे जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए, कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसा मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकते हैं और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकते हैं। तो अपन ये चीजें आपको बताते हैं, जो बातें आपको बताते हैं, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हो, चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो आजीविका से जुड़ी बातचीत हो, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, सारी बातें जो रहेंगी, उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें या फिर व्हाट्सअप करें या फिर फेसबुक पे भी हम और रहेंगे और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में। और खास तौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय के लाने बना है वो जैसे रूपा जी ने अनुभव दिए हैंगे, तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। यदि आप सफल व्यवसायी हैंगे, आपको लग रहा होगा कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है या फिर आपको लग रहा होगा कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं।
0: बिल्कुल यही प्रकार है और हम वो ये सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे ही दो। तो साथियों सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाते हैं ये कार्यक्रम से और आपको अगर कोई संपर्क करने हैं तो उनके लाने हमारा नंबर जो है वो
1: हाँ, और साथ ही जरूर फोन लगाएं या फिर फेसबुक पे फॉलो करें या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
0: अरे मनीष भैया सुनो सुनो सुनो सुनो तुमने ऐप के बारे में काहे नहीं बताओ? और
1: ऐप हमारे श्रोता साथियों के पास
0: जानत है?
1: नहीं नहीं जानत तो हैंगे, और हम एक बार फिर से कह वो चाहते हैंगे कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पे भी उपलब्ध है वो, जहाँ पर रेडियो नहीं पहुंच पा रहा है वो रेडियो सेट के माध्यम से वहां पे इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रेडियो बुंदेलखंड वहां भी उपलब्ध है वो, और आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाने है वो, और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड का लोगो उपलब्ध पाओगे, बाको डाउनलोड करो और चांद जिते बैठ के हैं, यदि आपके पास इंटरनेट है वो चांद उन छिड़िया में बैठ के सुन सका थेंगे और अपनी ज्ञान की बात अनखो सुन सका थेंगे।
0: तो केवल साथियों ज्ञान की बातें सुनबे नहीं मनोरंजन की बातें भी सुनबे के लाने आप डाउनलोड जरूर करबे ऐप, काहे कि अपने श्रोता साथियों की हर बार जैसी शिकायत रहती कि रेडियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है अपने फोन में प्लीज

स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लेवे रेडियो बुंदेलखंड को ऐप, और फिर अपन जिते चाहे बैठ के ई कार्यक्रम को सुन सका थे सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अब भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा हो काहे कि अब हमें चलन दो, और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में हम पंचायत पर बातचीत करते हैं, उन ग्रामों पर बातचीत करते हैं, ग्राम के विभिन्न ढांचा जो हम जिसे पंचायत कहा जाता है उन पर बातचीत करते हैं। ग्राम सभा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया था। आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि छोटे छोटे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तक लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है, हमारा पंचायत में कितना योगदान है, ये अभी तक किसी ने नहीं समझा है। और लोग बस हवा हवा में बात करते रहते हैं कि हमारी पंचायत है, सरपंच हमारा है, काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, उस बातचीत को आप समझिएगा तब आप कहिएगा कि ये पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें ये हमारा अधिकार है, ये नियम कानून है, इस बात को गौर करिएगा। अभी तक तो हवा हवा में बात होती है कि साहब मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा है, भाई साहब हमारे गांव में नाली की समस्या है, आप उस पर प्रकाश तो डालिएगा। आपको यही पता नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में खटक रहा था कहीं ना कहीं कि अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार के बारे में पता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, सिस्टम क्या होता है ये भी पता नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखड़िया और मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा बिंदु है, बड़ी समस्या है, लोगों को यही पता नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम हमारे एक्सपर्ट चंदन जी से आज हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कौन सा अधिनियम है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। तो आइए हम पंचायती राज व्यवस्था पर चंदन जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लेकिन विराम के बाद।

0: अब तो ऐसा अभियान चलाना है।
1: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
0: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
1: सरपंच पर

सबको समझाना है, आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है, आओ बहनों हम सबको

0: जो भी राज से मिला आरक्षण वो हमको अपनाना है,
1: जो भी राज से मिला आरक्षण वो हमको अप...

0: आरक्षण वो हमको अपनाना है।
1: पंचायत से संसद तक,
0: पंचायत से संसद तक
1: बहनों को पहुंचाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।

0: बन सकती हूँ सरपंच, तुमको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: घर से पंचायत तक,
1: घर से पंचायत तक,
0: हम सबको मिलकर जाना है। आओ बहनों, हम सबको ऐसा

0: हम सबको।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत।
1: गांव में किते किते और का काम हुज्जे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: 100 साल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: चंदन जी, हमारे साथियों को बताइएगा कि चूंकि बातचीत हम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, तो पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
6: तो हमारा जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं, खास करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ।

0: पंचायती राज में, तो इसके बाद ये लोगों को अधिकार दिए गए जो वो अपने गांव की योजना पंचायत के साथ मिलकर खुद तैयार करें, अपनी आवश्यकताओं को खुद समझें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसके समाधान की रणनीति तैयार करें। ये तो एक कानूनी पक्ष है जो हमें पंचायत के कानून के द्वारा प्रदान किए गए पंचायतों को, ग्राम सभा के लोगों को। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा, जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की या विकेंद्रीकृत नियोजन की बात हूँ तब करें, पहले ये समझ लें जो नियोजन क्या है, पहले नियोजन कहते किसको है। नियोजन आमतौर पर किसी भी काम को करने से पहले जब पूरी तरह उसके बारे में सोच विचार लिया जाता है, सलाह मशविरा करके जब जो निर्णय लिया जाता है और उस काम को करने की रणनीति या तरीके सोचे जाते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं।
1: क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातचीत बताई है, मन में एक हमारे सवाल चल रहा है कि ये नियोजन की प्रक्रिया है वो क्या है, इसको विस्तार से हमारे साथियों को बताइएगा।
0: नियोजन या योजना बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति, जो हमारा ग्राम सभा का समुदाय है या ग्राम सभा के जो लोग हैं या पंचायत के जो लोग हैं जिनको हमने चुना है, वो पहले खूब सोच विचार करे, काम करने के नए नए तरीकों पर विचार करे, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को सोचे और तब जाकर समाधान करने के निर्णय पर पहुंचे जिससे उसका सही क्रियान्वयन हो सके। और अगर आप उसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, जब हम वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पर जब छोटी छोटी योजना बनाते हैं उसे ही सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब छोटा और नियोजन मतलब योजना तैयार करना। जब हम छोटी योजनाओं को तैयार करते हैं छोटे छोटे स्तर पर तो उसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहा जाता है। इसमें एक बहुत आवश्यक चीज ये है, जो हम योजना को तैयार करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं, उनके साथ हम उनकी सहभागिता से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं योजना के निर्माण के लिए और क्रियान्वयन, मतलब उस योजना तैयार होना ही बड़ी बात नहीं है विकेंद्रीकृत नियोजन में या गांव पंचायत के स्तर पर जो छोटी योजनाओं तैयार करते हैं। इसमें हम जरूरी पक्ष ये हो जाता है जो योजना तैयार करने के बाद उस पर कैसे काम किया जाए, कि देखरेख कैसे की जाए, उसमें जिम्मेवारी कैसे तय की जाए, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है, ये सामूहिक तौर पे जो पंचायत के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं, इस तरीके का विश्लेषण से उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वो बैठ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, किस आधार पे कहां पहुंचना है ये निर्णय तय करते हैं, तो एक तरह से ये उनकी क्षमता भी बढ़ाती है गांव के लोगों के साथ, जो वो अपने स्थानीय परिस्थिति स्थानीय स्थितियों को सोचने के लिए थोड़ा समझें चीजों को। जो हमारी एक मजबूत इकाई है, जो एक ताकतवर इकाई है गांव के संदर्भ में देखें या ग्रामीण संदर्भ में देखें, और पंचायत एक ऐसी इकाई है जिसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है। अगर आप देश के स्तर पर देखते हैं तो हमारे पास संसद है, राज्य के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, अगर आप गांव के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास पंचायतें हैं। इसे कानूनी अधिकार प्राप्त है जो ये एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस परिस्थिति में खास करके एक संस्था के संदर्भ में देखें तो पंचायत जो है वो विकास के लिए योजना बनाता है, लेकिन विकास की योजनाएं ऐसी होती है जो आपकी सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित हो, मतलब सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए पंचायत को विकास की योजना बनानी पड़ती है। इसमें गांव के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे आप बोल रहे थे जो नाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोग मानते हैं, लोगों का ये सोचना है जो समस्याएं हमारे पास जो है उसके समाधान करना जो है वो सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कानून ये कहता है जो गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं या पंचायतें हैं वो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है, वो एक वहां की लोकल सरकार है, वो तो लोकल सरकार है। और इसके लिए पंचायतों को तीन चीजें दी गई हैं जो बराबर एक विषय बनता रहता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, उनके कानूनी रूप से उनके काम तय किए गए हैं जो पंचायतों को क्या करने हैं, उन काम को करने के लिए उनको लोग दिए गए हैं और लोग के साथ उनको पैसे भी दिए गए हैं जो काम करे। आमतौर पर किसी भी काम को करने के लिए तीन चीजें जरूरत है, आपके पास अधिकार होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए। ये तो ये तीनों चीजें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो पैसे की बात है अलग अलग योजनाओं से माध्यम से पंचायतों को दिए गए हैं। कुछ ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो पंचायतें अपना स्वतंत्र निर्णय ले गांव के लोगों के साथ बैठ के, तो इस थोड़ा सा मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायतें हैं, स्थानीय समस्याओं के निराकरण वहां के लोगों के साथ मिलकर वो करे। ये पंचायत, ये जो समस्याएं हो सकती है वो किसी विभाग के कर्मचारी से उसका मार्गदर्शन लिया जा सकता है और पंचायतें अलग अलग मुद्दे पे योजना बना के अलग अलग विभागों को भेज

0: देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने कहा था जो विद्यालय की समस्या है, तो विद्यालय की समस्या है तो इससे संबंधित योजना बना के शिक्षा विभाग को भेजा जा सकता है जिले के स्तर पे। पीने की पानी की समस्या है, इसको लेके हमारे जो योजना बना सकती है पंचायत, योजना बना के आपको पीएचईडी विभाग को भेज सकती है। आपके पास शौचालय की समस्या है, शौचालय की समस्या को लेकर सरकार ने इतना बड़ा समग्र स्वच्छता अभियान चला रखा है, उसको लेके बात की जा सकती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बहुत अच्छी हमारी जानकारी पंचायती राज व्यवस्था को और एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला जो हमारे साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाके अब पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर समस्या है, कहां पर लोग अपना निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। चंदन जी आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे श्रोता साथियों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
3: पंचायत की।
2: गांव में किते किते और का काम हुजे जो तय को करे?
4: ग्राम सभा।
2: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
3: ग्राम सभा की।
2: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
5: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: एक बार फिर से पुनः दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। आप तो दोस्तों समझ गए होंगे, आप एहसास हुआ होगा, अभी तक साथियों को ये पता नहीं, उनने सोचा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला और बस काम हो गया है। ये साथियों अब हमें जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बस एक ही जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हम वोट डाल दिया, हमने सरपंच गठन कर दिया, अब सरपंच ही सारा काम करेगा। नहीं दोस्तों, अब हमें जागरूक होना होगा, तभी हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि समितियां इसलिए बनाई जाती हैं, निगरानी समिति हो। हर किसी कार्य योजना कब तैयार की जाती है? ग्राम सभा में जब कार्य योजना तैयार की जाती है, जैसे चंदन जी ने अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कार्य योजना तैयार करना एक बात नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी बात रहती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्य योजना अब तैयार हो गई है, हमने नाली का प्रस्ताव दे दिया है, अब बन जाएगी। अब उसमें ये देखना है हमारे पंचायत में कितना पैसा है, पंचायत में कैसे कौन क्रियान्वयन करेगा, कैसे रहेगा, कौन निगरानी इसकी करेगा, ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए, तभी हमारे गांव का विकास होगा। एक आदर्श गांव आप दोस्तों किसे समझते हैं? एक आदर्श गांव वही गांव होता है जहां पर हम खुद सरपंच के साथ मिलकर जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी हो। आप जब बैठक होती है तब आप बताइएगा कि ये काम हम देखेंगे, आप नाली का अगर बात की जाए नाली का काम नहीं, ये हम देखेंगे, जल का काम ये समिति गठित कर दी है, ये काम देखेगा, तब काम में मजा आता है और पंचायत भी अच्छी तरीके से चलती है। अब अभी तक क्या होता है, सरपंच हमने बना दिया है, सरपंच ने प्रस्ताव डाल दिया है, वो भी गोपनीय तरीके से प्रस्ताव डाल देते हैं, जब भी ग्राम सभाएं होती ग्राम सभा प्रस्ताव डाल के बस तैयार हो जाता है। अब क्या मटेरियल लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरपंच ने डलवा दी है। एक अच्छा नागरिक की यही पहचान दोस्तों होती है कि हमें उस चीज के प्रति जिम्मेदार लेना चाहिए, उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमें अपने आप को स्वयं इस चीज के लिए सरपंच को कहना चाहिए कि ये हम जिम्मेदार हैं और इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। दोस्तों हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। पंचायत में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है, चाहे वो सदस्य के रूप में हो या फिर उप सरपंच के रूप में हो या सरपंच के खुद रूप में हो। अब क्या होता है कि सरपंच गठित कर देते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे घर में शौचालय नहीं है साहब, हमारे घर में शौचालय बनवाइए। आप खुद जिम्मेदारी लीजिएगा कि जब ग्राम सभा होती कितने शौचालय बन गए हमारे ग्राम में, अब कितने शेष हैं, नाली की क्या समस्या है, खंजड़ा की क्या समस्या है, ये सारी समस्याएं देखते हुए तभी हमें अपने कार्य को बढ़ाना होगा और साथ में ग्राम के विकास में अपना साथ एवं सहयोग देना होगा। साथियों बस इतना ही हमारे इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार में, आपकी हमारी फिर पंचायत पर बातचीत होगी अगले कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है, यदि चिट्ठी के माध्यम से आप बताना चाहते हैं तो पता लिख लीजिएगा। हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा, और हमारा फोन नंबर है 9425147726। तो आपके रेडियो दोस्त मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा।

0: ये शेर वो पढ़ रहे हैं जो फिल्म में जो अकबर में नहीं।
1: इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं।
2: इरादे रोज बनते हैं मगर वो

0: हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब है, उसको किस अंदाज में हमारी एक कोशिश है। गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं,
1: गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं।
0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं,
1: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं।
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
1: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
0: होली ईद दिवाली
1: मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं।
0: झंडा तिरंगा हाथ में लेके

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को आपके रेडियो साथी मनीष की दो हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम पहुंच जावे। और किसान भाइयों कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे सभी किसान पंच भैया बहन अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे किसान साथियों की जो इस बार ज्यादा बरसात को हो गई हैगी, तो ऐसे बरसात में हमारे बहुत सारे किसान साथियों ने अपनी बोनी भी नहीं कर पाई है, तो कई किसान हमारे मायूस भी हुई हैं और कई किसान खुश भी हुई हैं कि अच्छा पानी गिर गया है और आगे की फसल को हम अच्छी तरीके से और जल्दी से और जो टाइम बुवाई कर रहे थे वो टाइम पे अपन बुवाई कर लेंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैंगे, जो भगवान जरूरत हैंगे और भगवान के संगे संगे जो अपना पर्यावरण बदल रहा है वो कछु ना कछु तो विचार हमें जा पे करें चाहिए कैसे पर्यावरण बदलत है वो। और पर्यावरण बदलवे से जे सारे नुकसान देख वेखो और सुन वेखो मिलत हैंगे। लगातार कितने दिन से अपने यहाँ बरसात हो रही है और इतना पानी चारों तरफन पानी पानी दिख रहा है वो, तो खुशी की बात भी है और दुख जा बात को है कि किसान साथियों की मौनी नहीं भैयेगी। आज हम हमारे किसान साथियों के लाने गेंदे की खेती कैसे भी कर सकते हैं, कैसे फूलन को व्यवसाय भी एक व्यवसाय रहेगा और खेती भी रहेगी और जो अपने एग्रोफॉरेस्ट्री करते हैं यानी कृषि वानिकी जो करते हैंगे, बीच बीच में अगर हम गेंदन के पौधा लगा देंगे तो सीजन भी आ रहा है गो और सीजन में वे गेंदन के जो फूल रहेंगे काफी अच्छो मार्केट भी हमें मिल सकता है गो, तो यही विषय पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जासे पहले अपन एक नजर डाल लेते हैंगे मौसम चक्र पे, कैसे मौसम जो अपनो का कथ है गो, मौसम हमारे लाने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते है गो, तो मौसम की जानकारी भी अपन सुनो। तो सबसे पहले अपन बता रहे हैंगे मौसम की जानकारी, हमारे संग है वर्षा, तो भी मौसम की जानकारी हमें बताएं।
1: श्रोताओं नमस्कार, जब मौसम की जानकारी हम आपको पहुंचा पा रहे हैंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। साथियों, उड़द व मूंग की फसल में जड़ सड़न रोग देखो जा रहा है वो, अतः किसान भाई केलाने फसलन को निगरानी करत रहे, साथ ही में खेत में पाए जावे बारे रोकथाम हेतु 2.5 ग्राम मैनको जैव दवा की मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ हुए पे छिड़काव जरूर कर देवे। साथियों, आवे बारे 3 से 4 दिन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाये रहने की संभावना हैगी। दिन के अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात को न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना हैगी। हवा की औसत गति 14 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आवे बारे 3 दिनन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाये रहने की संभावना भी हैगी। इको ध्यान में रखत भय सब्जियन में दलहनी तथा तिलहनी फसलन में जल भराव की समस्या हो सकत हैगी, अतः किसान भाई जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लेवे। संगे में कीट व्याधियन के लाने निगरानी को कार्य भी करत रहे, साथ में यदि जरूरी हुए तो किसान भाई दवा को छिड़काव करत रहे समय पे। इमें एक

0: मीटर टी पॉल भी मिला लेवे। इस समय धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लाने खरपतवार नियंत्रण हेतु 20 पाई रीबैंक सोडियम 250 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करवे तथा पहले से लगाई गई धान की फसल में तना छेदक कीट की संभावना बनी हुई यदि दिखे तो कारटप हाइड्रोक्लोराइड 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालवे। जिन किसान भाइयों की टमाटर मिर्च तथा बैगन आदि की पौध तैयार हैगी वे इनकी रोपाई मेड़न पे यानी उथली क्यारियन पे करवे। बादल छाए रहवे की संभावना को ध्यान में रखत भय कद्दू वर्गीय सब्जियन में फली छेदक कीट जैसे फली मक्खी फली बग और प्लम्ब मोथ कॉपर को भी देखने की संभावना बनी हैगी। इको नियंत्रण करवे के लाने प्रोफेनोफॉस 50 ईसी 1500 मिली हेक्टेयर खो 600-700 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर देवे। बैगन में फल छेदक कीट कॉपर को भी देखो जा रहा है वो इके नियंत्रण हेतु क्लोनोफॉस 25 ईसी दवा की 2.0 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव साफ मौसम में कर देवे। अरबी में कंद गलन रोग को प्रकोप देखो जा रहा है गो। सो साथियों इके लाने बचाव हेतु आपको मेटालेक्जिल मैनकोजेब दवा को 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ होवे पे छिड़काव करवे। पशुओं को ज्यादा हरी घास ना खान देवे नहीं तो अफरा की समस्या भी हो सकत हैगी। आसमान में बादल छाए रहवे के कारण धूप की अवधि में कमी को देखत भय किसान भाई मुर्गी घरन में रात के समय 4-5 घंटा रोशनी की व्यवस्था कर देवे तथा इके दानन में ऊर्जा और विटामिन की मात्रा बढ़ावे संगई में कैल्शियम भी मिला के दे देवे। तो किसान भाइयों आप सब जने सुन रहे थे जानकारी मौसम आधारित जानकारी और जानकारी आपको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से। नमस्कार।
1: तो साथियों अभी आपने हमारे वर्षा जी से मौसम आधारित जानकारी को सुना और जानकारी हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो गेंदा की खेती पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसे चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर एक विराम लेते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और गीत के बाद आपको सीधा विषय विशेषज्ञ के पास ले चलेंगे और उनसे जानेंगे किस तरीके से गेंदे की खेती कैसे सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, क्या क्या किस तरीके से हमें लगाने और विधि क्या हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: मेरी गोल्ड फार्मिंग, गेंदे की खेती कब और कैसे करना चाहिए, बेस्ट वैरायटी जो कि हाइब्रिड किस्में हों। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से कैसे आप गेंदे की मेरी गोल्ड फार्मिंग की एडवांस खेती, वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पौधे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, स्प्रे खाद और उर्वरक की मात्रा, इरिगेशन फर्टिगेशन के साथ साथ खरपतवार की रोकथाम, उत्पादन लागत, मुनाफा और नेट प्रॉफिट के साथ साथ लाइफ साइकिल।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मेरी गोल्ड फार्मिंग वैसे कई सारे किसान करते आए हैं और कई सारे राज्यों में होती है, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात दो तीन चीजें हैं। मैं ऐसा जानता हूं और हमने महसूस किया है, कई किसानों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो गेंदे की फूल की खेती के साथ कुछ दो तीन बातें जुड़ी हुई है जो सबको नहीं पता है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो मैं उस टॉपिक के बात करूंगा। वैसे बहुत आसान खेती है, लेकिन उसमें पैसा कमाना और पैसा बनाना, जमीन को सुधारना, पेस्ट डिसीज कंट्रोल करना, वो सब साथ में उसके फायदे जुड़े हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक में दो तीन टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनना, अंत तक बने रहना ताकि आप कोई चीज मिस ना कर जाए। तो गेंदे की फूल की खेती मुनाफाकारक बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो है वो चीज है बुवाई का समय। तो बुवाई का समय कब करना चाहिए ताकि आपको रेट ज्यादा मिले, तो उसका एक जानकारी है, दूसरी वेराइटी, तीसरी चीज है उसमें थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट और उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर पे बिजाई कब करें। किशन भाइयों, नॉर्मली गेंदे का फूल ट्रांसप्लांटिंग के बाद 40 से 45 दिन में पहला फूल दे देता है और उसके 15 से 20 दिन में 2 से 3 तुड़ाई हो सकती है। कोई अच्छी ट्रीटमेंट चलती है तो पहले 45 दिन के बाद और 20-25 दिन आप आगे ले सकते हो। तो गेंदे का फूल आप मानो कि टोटल हम एक 60 दिन 2 महीने का पीरियड गिनते हैं कि प्लांटिंग से लेके पहला फूल और वहां से 15 से 20 दिन नॉर्मली, तो टोटल 60 दिन पकड़ते हैं हम। तो आपको सबसे ज्यादा रेट कब मिलेंगे, गेंदे के फूल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कब होती है, तो नॉर्मली ऐसा महाराष्ट्र में कहते हैं दशहरा से दिवाली के आसपास में अगर आपको फूल चाहिए तो आपको बिजाई करनी चाहिए। कब? तो कि आपको रक्षाबंधन में बिजाई करनी चाहिए। बहुत सिंपल गणित है, रक्षाबंधन के दिन आपने ट्रांसप्लांटिंग किया, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझो कि 15 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया, तो 15 अगस्त से 2 महीना, मतलब 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, यानी कि नवरात्रि, दशहरा या दिवाली के आसपास आपको फूल मिलेंगे। ये नॉर्मल कहानी है। आपको गणपति भी चाहिए तो उससे और 15-20 दिन पहले प्लांटिंग करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हिंदू कैलेंडर के आधार पे जो त्योहार आते हैं, हमारे रिलीजियस फंक्शंस जो आते हैं, और उसके बाद शादियां शुरू हो जाती है, दिवाली के बाद शादियों का मौसम होता है। तो किसान भाइयों क्या है कि आपको 60 दिन पहले उसके प्लानिंग के, अभी इस बार की बात करें तो इस बार दशहरा दिवाली कब है वो कैलेंडर के आधार पे हमको प्लांटिंग सिलेक्ट करना चाहिए। तो अभी इस बार मान लो कि नवरात्रि की शुरुआत होती है लगभग लगभग 22 सितंबर से, लगभग 2 या 3 तारीख को दशहरा आएगा और उसके 20 दिन के बाद यानी कि अक्टूबर के एंड में आपको दिवाली आएगी। तो आपको समझना है सितंबर की 15 तारीख से लेके अक्टूबर की एंड तक ये डिमांड रहेगी पूरा 1.5 महीना। तो आपका प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए कब, तो कि लगभग लगभग 20 सितंबर से शुरू होना चाहिए प्रोडक्शन। तो आपको कहीं ना कहीं 15-20 दिन चला या 1 महीना चला, आप जितना चला पाए तो दिवाली तक खींच सके तो खींच लो,

शुरुआत हो जाएगी नवरात्रि के अंदर, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा। दशहरा का दिन आपको ज्यादा प्रोडक्शन आएगा, उस दिन डिमांड भी ज्यादा रहती है, और उसके बाद में दिवाली पे भी आपका थोड़ा बहुत प्रोडक्शन आएगा। तो ये एक आयोजन ऐसा है, सबका अच्छा हो गया तो हो सकता है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा दो तीन टप्पे में भी प्लांटिंग करते हो तो भी चलेगा। तो आप कुछ अगस्त के पहले वीक में करो, फिर अगस्त के दूसरे वीक में करो, एक अगस्त के तीसरे वीक में करो, ऐसा करोगे तो भी चलेगा। तो ऐसा करने से आपको एक बेनिफिट हो सकेगा, आपकी खेती में फूल लंबे अरसे तक थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े निकलते रहेंगे। तो मार्केट का फ्लक्चुएशन कम से कम लगेगा, तो आपको ओवरऑल रेट मार्जिन थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। अभी उसका एक सिंपल गणित मैं आपको बताता हूँ। एक एकड़ के अंदर मानो कि आपने प्लांटिंग किया है, तो तकरीबन 6 से 7 हजार पौधे आएंगे। 6 स्क्वायर फीट में एक, यानी कि 3 से 3.5 फीट में लाइन आएगी, और 1.5 से 2 फीट में आपको लगाना है। तो 6 स्क्वायर फीट में एक पौधा फैलेगा अच्छी तरह से, तो आपको 42,000 स्क्वायर फीट का एक एकड़ होता है, 43,560 लगभग। आप ऐसा गिनते हो तो 7 हजार जितने पौधे आएंगे। 7 हजार पौधे में से मानो कि 1 हजार पौधे को बॉर्डर इफेक्ट, मर गया, डिसीज लग गया, और नॉर्मली आपके 6 हजार बच गए, मैं तो बोलता हूँ 5 हजार ही बच गए, और 750 से 1 किलोग्राम वजन दे देता है, 4 से 5 टन वजन आता है, 50 रुपये किलो रेट भी रहता है, 100 रुपये भी रहता है। मैं तो ऐसा गिनता हूँ, एक नॉर्मल हिसाब करते हैं कि 4 हजार किलो आपका प्रोडक्शन आया एक एकड़ में से, और आपको ज्यादा नहीं केवल 20 रुपये का एवरेज आया तो भी 80 हजार का होता है। 10 रुपये भी रेट रहा है किलो का तो भी 4 हजार किलो का प्रोडक्शन आया, 40 हजार का हुआ। ये सिर्फ 60, 65 और 70 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 80 दिन तक चलता है, उससे ज्यादा चलता भी नहीं। तो ये खेती एकदम, जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में, कि जैसे कैच क्रॉप है, आपने लगाया और तुरंत ले लिया, उगवा लिया। अभी इसमें ध्यान रखने वाली बाबत ये है कि पहले नंबर पे आप कोई एक रंग का पसंद मत करो, मल्टी कलर में करो, यानी कि नारंगी वाला भी करो और पीला वाला भी करो। तो मार्केट में जिसका डिमांड ज्यादा होगा, एक का कम होगा, एक का ज्यादा होगा, कभी क्या होता है आपको पता नहीं, हमको पता नहीं, मार्केट कहाँ पे ट्रेंड करता है, लेकिन दोनों लेके जाओगे आपका बिक जाएगा। कभी किसानों को ऐसा भी होता है कि कोई दिन 2-2 रुपये किलो भी बेचेंगे, तो कभी ऐसा होता है कि कभी 100-100 रुपये किलो भी बेचेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया है, वैसे आप दो तीन फ्लक्चुएशन को टालने के लिए, कि एक तो दो कलर का करो, 3-4 टप्पे में करो, जैसे मैंने कहा अगस्त के पहले वीक में किया, दूसरा थोड़ा सा मतलब 1 एकड़ का प्लानिंग है तो 1/3 एकड़, यानी कि 10-15 गुंठा में अगस्त में पहले वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा में अगस्त के दूसरे वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा तीसरे वीक में किया, तो आपका गणपति से लेके दिवाली तक का प्रोडक्शन सेट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमको खुद को ऐसा एक्सपीरियंस है, गणपति में रेट नहीं मिला उस दिन, उस साल सबका अच्छा हुआ था, फिर रेट नहीं मिला तो सबने निकाल दिया, हमने रखा था, वैसे भी खर्चा कर चुके थे तो रखा था, तो दिवाली पे हमको रेट ज्यादा मिला, तो हमारा पूरा खर्चा ले आया। ऐसा था कि हमने 2 रुपये किलो बेचा था और 120 रुपये किलो भी बेचा। तो ऐसा फ्लक्चुएशन टालने के लिए आपको कुछ डिसीजन भी बाद में लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने ऐसा बताया कि दो वेराइटी करो, दो तीन टप्पे में प्लांटिंग करो, तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसमें वो खाद वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गेंदे का फूल है वो इल्लियों को आकर्षित करता है, खास करके पतंग को अंडे देने के लिए आकर्षित करता है, तो उसमें हरी इल्ली आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो आप उसके लिए छिड़काव का कुछ प्रबंध कर सकते हो। नॉर्मली शुरुआत में थ्रिप्स आती है तो थ्रिप्स के लिए कोई प्रबंध कर सकते हो। अल्टरनेटिव ब्लाइट वगैरह आता है तो उसको कोई प्रबंध कर दे सकते हो। खाद भी बहुत इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन फिर भी डाली की फूटान, वृद्धि विकास, कलर क्वालिटी, उसके लिए आपको चाहिए, तो आप एक एकड़ में एक बैग DAP, एक बैग पोटास पहले से डाल दो, बाद में डालने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फटाफट फटाफट फटाफट कार्यक्रम होता है इसमें। 60 दिनों में, तो मतलब 45 दिनों में फ्लावरिंग आता है, 60 दिनों में पीक जाता है, फिर धीरे धीरे धीरे कम हो जाता है, 70-80 दिन में तो खत्म हो जाता है, मतलब पूरा 3 महीने की भी फसल है नहीं, 1.5 महीने में शुरू और 3 महीने में से पहले खत्म, ऐसी फसल है। तो आपको पहले से एक बैग DAP, एक बैग पोटाश डाल दो, मजबूती के लिए पोटाश भी जरूरी है, तो कलर के लिए भी जरूरी है, और बाद में एक आध दो स्प्रे आप न्यूट्रिशन का ले सकते हो, कि जब आप डाली फूटान की अवस्था में हो तो आप हॉस्टल ले लो, कि ज्यादा से ज्यादा डाली फूटान का ग्रोथ जल्दी जल्दी आ जाए, और जैसे ही 40-45 दिन हो जाए तो एक माइक्रोग्रेन का ग्रेड आप दे सकते हो, जैसे महाराष्ट्र में ग्रेड 2 है, गुजरात में ग्रेड

तैयार है, जो है आपके राज्य का आपका जो भी ग्रेड है आप माइक्रोमीटर का स्प्रे कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो आप स्टेलर वगैरह ले सकते हो, जिसकी वजह वृद्धि विकास के साथ नंबर ऑफ फ्लावर भी बढ़ जाए। वृद्धि विकास ज्यादा हो रहा है तो 0.34 का प्रयोग करो, अगर ऐसा नॉर्मल है तो कोई जरूरत है नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है फर्टिलाइजर वगैरह में, कुछ ना करो तो सिंपल पहले बेसल डोज में संचार डाल दो, बाद में भूमिका डाल दो, और उसके साथ में थोड़ा सा पहले डीएपी डाल दो आधी बैग, और बाद में थोड़ा आधा बैग यूरिया डाल दो, थोड़ा सा पोटास डाल दो तो भी चल जाएगा। खाद का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्लांट डेंसिटी मेंटेन करना। आपको 7000 प्लांट मेंटेन करने पड़ेंगे तो ही फ्लावरिंग अच्छी आएगी। दो वेराइटी अलग अलग करो, दो तीन टप्पे में करो, तो आपको ये मुनाफे वाली खेती हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जैसे मैंने कहा है कि 4 टन तो मिनिमम उत्पादन आता ही आता है 4000 किलो, और उसके बाद में आप अच्छी सी मेहनत कर लेते हो तो थोड़ा उत्पादन बढ़ने की भी संभावना है, और आपका नसीब लग गया और 4 टन में से 1000 भी टन 30-40 रुपए किलो चला गया तो 30-40 हजार तो उसी पीकिंग का आ जाएगा, बाकी का 20-30 हजार दूसरा आएगा, तो 50 से 60 हजार प्रति एकड़ 2 से 3 महीने में आ सकता है। अभी आते हैं ना दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया ये फसल उस पेस्ट को आकर्षित करती है, यानी कि हरी इल्ली की जो पतंग होती है उसको आकर्षित करती है अंडे रखने के लिए। तो ये आप कोई भी ऐसी फसल लगाई है, जैसे कि वेजिटेबल्स लगाया है या तो अरहर लगाई है, तो उसकी बॉर्डर पे कर दो, या तो एक एक लाइन छोड़ के एक एक में करो। तो अरहर वगैरह लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 4-5 महीने का फसल है। बैगन वगैरह 4-5 महीने का फसल है, तो उसकी बॉर्डर पे आप लगाते हो, या तो 2-3 प्लांट 2-3 लाइन लगा के लगाते हो, तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम 45 से 60 दिनों में हो जाएगी। प्लस उसके साथ ही साथ में वो इल्लियों को आकर्षित करता है, तो वहां इल्लियां ज्यादा आएगी, तो आप दवाई उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो, और आपको निगरानी में भी रख सकते हो कि भाई यहाँ भी इल्लियां ज्यादा है तो अभी आगे अपनी मुख्य फसल में भी इल्ली आएगी, तो एक ट्रैप क्रॉप की तरह भी आप उपयोग कर सकते हो इसको। दूसरा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जमीन के अंदर निमेटोड कंट्रोल करता है। लोगों के अलग अलग विचार है इसमें, कि ऐसा बोलते हैं कि भाई इसमें निमेटोड ज्यादा आ जाते हैं इसलिए मुख्य फसल में नहीं आते, कुछ लोगों का ऐसा सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो हमको सुगंध आती है वो अल्कलॉइड है, और वो कहीं ना कहीं निमेटोड के लिए जहर है, मतलब वो खाने से रोकता है। और खास करके हमने ऐसा देखा है, ये हमारा अनुभव है, गलगोटा जिसको बोलते हैं देसी वाला, उसमें थोड़ा वो प्रमाण ज्यादा होता है जड़ों में। और अगर आप वो पर्पज से कर रहे हो, तो जैसे मैंने बताया कि निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए कर रहे होगे, जैसे कई किसान भाई हमने देखा है कि राजस्थान में चोमू वाले इलाके में, ये गुजरात में अगर आते हैं तो ईडर के आसपास के इलाके में, मेहसाणा के आसपास में आते हैं, राजकोट के आसपास में, बड़ौरा के आसपास में, महाराष्ट्र में आते हैं तो ये नारायणगांव के आसपास में इलाके में, जमीन में मीडियम टू लाइट सॉइल है, जमीन उपजाऊ बहुत है, तो मीडियम टू लाइट सॉइल मतलब निमेटोड ज्यादा। इवन चिली वाला एरिया, कहीं भी चिली मिर्ची वगैरह होती है, लौकी वगैरह होती है, कुकुरबिटेसियस फैमिली का होता है, वहां जमीन में निमेटोड बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप एक मॉनसून सीजन में इसकी खेती करो, और थिक डेंसिटी, जैसे मैंने बोला नॉर्मल कॉमर्शियल फार्मिंग करने के लिए आपको 6 से 7 हजार पौधे लगाना है, इसमें 10 हजार पौधे लगाने, और देसी वाला गलगोटा कर देना, आपका एक सीजन जाएगा, लेकिन लगभग लगभग निमेटोड से 80-90% शांति मिल जाएगी। ये ट्रीटमेंट ऐसी है कि मानो कि कुछ ना किया, आपने 8 से 10 हजार पौधे लगाए हैं, तो आपका 4 टन भी 5 टन भी प्रोडक्शन आ गया, और 10 रुपये भी रेट आ गया, तो आपको 50 रुपये मिलेंगे, और ऊपर से फ्री में निमेटोड कंट्रोल हो जाएंगे। वैसे कई किसान भाइयों को पता होगा कि निमेटोड की दवाइयाँ बहुत महंगी आती है, मल्टीपल टाइम ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता। जब ट्रीटमेंट किया है तो 10-15 दिन 1-2 महीना अच्छा लगता है, फिर दूसरी चीज में दूसरा प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आप कर सकते हो, कि आप इसकी खेती कर लो, थोड़ा थिक डेंसिटी प्लांटिंग करो, और उसमें जमीन में जब ये इसका जो मटेरियल जाता है, जो तो रूट एक्जुडेट बोलते हैं, उससे निमेटोड को खाने में बहुत तकलीफ होती है, उसको एवॉइडेंस बोलते हैं, कि मतलब कॉन्टेक्ट, जड़ से कॉन्टेक्ट जो होना है वो होता नहीं, हुआ तो भी बहुत इन्फेक्शन होता नहीं। ओवरऑल कहने की बात यह है कि ये निमेटोड को मैनेज करने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम वनस्पति है, इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो मैंने 3 पार्ट बताए, एक पार्ट ऐसा है कि इसकी खेती में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ऑफ सोइंग है, कि कब सोइंग करोगे तो कब प्रोडक्ट

इलेक्शन आएगा तो मेरे हिसाब से अभी के हिसाब से ऐसा है कि अगस्त के पहला दूसरा या तीसरे पखवाड़े में किया तो आपको फायदा होगा, लेकिन मार्केट की फ्लक्चुएशन से निजात पाने के लिए आपको दो वेराइटी पसंद करनी है और तीन या चार टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो आपको जैसे हमको भी अनुभव है, मुझे 2 रुपये भी किलो बेचा था और 120 रुपये भी किलो बेचा था, तो ये आपका हो सकता है 40-50-60 हज़ार का एकड़ हो सकता है। मैं चाहता हूं कि बबर ऐसा करे कि आपका 4 से 5 टन प्रोडक्शन आए और 50 रुपये किलो बिके, 2-2.5 लाख का एकड़ भी हो सकता है इसमें। और उसके आगे निमेटोड बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होते हैं इससे। और तीसरा कि जैसे इसको ट्रैप क्रॉप की तरह प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे हरी इल्ली को ही आकर्षित करता है। और एक किसान भाइयों को बता देना चाहता हूं कि खास करके पोमोग्रेनेट यानी कि अनार की खेती करने वाले किसान हैं जो ऐसा लगाते हैं, दो तीन प्लांट लगाते हैं दो साइड में, मतलब ये लाइन है ये लाइन है तो यहाँ पे लगा देते, फिर उस तरफ नहीं लगाते, फिर आगे लगाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कमर्शियल की तरह लगाओ, एक पेड़ के आसपास में 15-20 पौधे लगा दो, वो लाइन में हो सके तो ज्यादा लगाओ, बराबर आपका प्रोडक्शन भी आएगा, मार्केटेबल वॉल्यूम आएगा आपको कि आप मार्केट में ले जा पाओ उतना वॉल्यूम में प्रोडक्शन होगा। तो आपको मानसून में खर्चा निकल जाएगा बहुत बड़ा। आप ये पपाया में लगा सकते हो, पपाया की बॉर्डर पे एक कैच क्रॉप की तहत आ जाएगा, क्योंकि पपाया का नॉर्मली लागवड़ जो होती है, नॉर्मल पपाया लगाते हैं मार्च अप्रैल या तो मई में लगाते हैं, तो पपाया छोटा सा रहता है तो उसके बाजू में आप लगा सकते हो, लगभग एक पपाया के आसपास में लगभग 4 से 5 पौधे 10 पौधे भी लगा सकते हो आप। ये कोई खाद खाता नहीं है, जितना पपाया में डालते हो उसमें 10-15% खाएगा, लेकिन जो निमेटोड के सामने रक्षण करेगा और जो इल्लियों को बचाएगा उतना ही काफी है, तो उतने से आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो खास करके बागवानी जो फसलें हैं उसमें ये एक कैच क्रॉप प्लस ट्रैप क्रॉप की तरह आप उपयोग कर सकते हो। तो इसलिए मुझे गेंदे का जो खेती है बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि किसान को फायदा ही फायदा करवाता है कि एक एंगल से नहीं, आप मल्टीपल एंगल से देखो आपको फायदा होता है। कभी ऐसा होगा, किसी किसान का होगा, हमारे साथ भी हुआ है ऐसा कि 1-2 रुपये में किलो में बेचा और कोई फायदा नहीं हुआ, पूरा 3-4 टन माल था और पूरा हमने 4-5 हज़ार रुपये लिया कि जितना तो उसमें डाला था उतना भी नहीं आया, लेकिन फिर वो जमीन सुधर जाती है, वो दूसरा बेनिफिट है, वो सब बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए खास करके इसको एज ए सिंगल क्रॉप लोग नहीं करते, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, या तो जैसे मैंने बताया सिंगल क्रॉप करना है तो मल्टीपल टप्पे में, मतलब 1-2-3 टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो किसान भाइयों खूब खूब धन्यवाद, हमको अच्छी तरह से सुना।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे इस प्यारी सी चर्चा को। हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा होगी और हमारे किसान साथी जो घर पर बैठे हैं वो इस तरीके की खेती कर अपने व्यवसाय के रूप में इसको ले सकते हैं। और व्यवसायिक तरीके से यदि हम खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे किसान साथियों को फायदा ही फायदा होगा। और अगर वैज्ञानिक विधि से हमारे किसान साथी इस फसलों को करना चाहते हैं तो जरूर अपने कृषि विस्तार अधिकारी या फिर संबंधित वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में आने वाली फसलों के लिए हम तैयारी भी कर सकते हैं, साथ में अपनी मिट्टी की परीक्षण भी करा सकते हैं और अपने मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है उसकी भरपाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि हम अब आने वाले समय में हम केमिकल से भरी खादों का इस्तेमाल करते हैं उसको ना करके हम जैविक विधि से अपनी खेती को करें, ताकि अपनी फसल जो उत्पादन होगा कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक कम होगा, लेकिन उसके बाद उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी और हमारे साथियों को ये राहत भी मिल जाएगी कि हमें जैविक भरी जो फल या सब्जियां रहती हैं या फूल रहते हैं उनका सेवन हमें करने को मिलेगा। तो हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे। नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप ही बिर आपने रेडियो साथी मददिन भैया के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन सावन के मल्हार गीत, और मल्हार गीतन को आनंद लें। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी मददिन भैया के संग में। आओ दोस्तों, देर न करत भाई सुनते गीतन को, लेते गीतन को आनंद।